0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
7: मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी, श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण, शील, सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थीं, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656569536 या 9656557902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707065775।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। ईंधन बचाने को लेकर पैदल ही अदालत पहुंचे आज सभी न्यायाधीशगण। ताइक्वांडो चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मंगलपुर पुल में आई दरार से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा दी गई रोक। सीमा विवाद को लेकर 50 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से हो गया गायब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। अमेरिका और इराक के युद्ध से उत्पन्न हुए ईंधन की समस्या से जूझ रहे भारत के लोग भी अपने अपने तरीके से ईंधन बचाने के उपाय कर रहे हैं। इसको लेकर जहां सरकार और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी लोगों से डीजल पेट्रोल और गैस को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं आज इसी कड़ी में न्यायपालिका ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों के बीच जागरूकता का संदेश देने के लिए सभी न्यायाधीशगण अपने आवास से न्यायालय में पैदल ही पहुंचे। इसको लेकर सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी और बंजारी में स्थित न्यायालय के आवासीय परिसर से सभी न्यायाधीशगण पैदल चलते हुए व्यवहार न्यायालय के नए परिसर में पहुंचे। इस दौरान इस पूरे आयोजन की अध्यक्षता गोपालगंज के जिला जज गीता गुप्ता ने की। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अनावश्यक वाहन प्रयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान पत्रकारों ने जिला जज गीता गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा,
8: सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधुओं को न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों ने ये निर्णय इसलिए लिया कि हम, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल और गैस की थोड़ी क्राइसिस चल रही है, उसकी जो उपलब्धता में जो कठिनाई आ रही है उसको देखने के लिए ये देश हित में हमारे द्वारा लिया गया एक छोटा सा कदम है। और इस के माध्यम से मैं लोगों से भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सभी अपने अपने स्तर पे सिर्फ छोटा सा ही एक स्टेप लेंगे, हर आदमी के मन में ये होता है कि सिर्फ हमारे ना जाने से क्या होगा, लेकिन अगर हर आदमी अपने स्तर पे एक दिन के लिए भी किसी भी चीज़ का त्याग करेगा, चाहे वो डीजल पेट्रोल का हो गया चाहे गैस का हो गया, तो निश्चित रूप से हम थोड़ा भविष्य के लिए अच्छा उसको बचा सकेंगे। और जो हमारी अभी उपलब्धता की जो मात्रा है, जो कमी है, उस चीज़ को हम दो दिन और आगे तक इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम ज़रूर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी गोपालगंज की जनता, और मेरा ये संदेश सार्वजनिक रूप से ये है कि ऐसा नहीं है, हम सभी भी देश के साथ हैं और देश हित के लिए हम सब भी कष्ट उठाने के लिए एकदम तैयार हैं और कष्ट उठा सकते हैं। तथा सभी को ये चाहिए कि एक दिन के लिए स्वेच्छापूर्वक जब उसको सुविधा लगे तो अपनी इन सुविधाओं का, जो देश हित में हमें कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं, उनका त्याग करना चाहिए।
9: कहाँ से कहाँ मार्च निकल
8: आवाज से सभी न्यायिक पदाधिकारी कोर्ट तक आए हैं, और हमारा एक दूसरा जुडिशियल आवाज है बंजारी, वहाँ के भी सभी जुडिशियल पदाधिकारी आज पैदल ही यहाँ कोर्ट तक आए हुए हैं।
7: बिहार सरकार खेल विभाग और राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला उत्कृष्टता केंद्र हेतु ताइक्वांडो खेल का चयन ट्रायल अंबेडकर भवन गोपालगंज में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से 16

कौशल परीक्षण में फुटवर्क, बेसिक किक, एडवांस किक एवं फाइटिंग स्किल का मूल्यांकन भी किया गया। इस चयन ट्रायल को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षक मुरलीधर राय, पिंटू कुमार राय, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, बसंत तिवारी एवं विनीत कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले में संभावित बाढ़ एवं कटाव की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के द्वारा कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से लेकर विशंभरपुर के भैंसही तक तटबंधों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति, साफ सफाई, सुरक्षा कार्य एवं चल रहे बाढ़ निरोधी कार्यों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने तटबंधों पर उगी झाड़ियों एवं अवरोधों को गंभीरता से लेते हुए जल मिश्रण विभाग सीवान से संबंधित कार्यपालक अभियंता को कड़ा निर्देश दिया। 15 जून 2026 तक हर हाल में सभी तटबंधों की साफ सफाई का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बरसात एवं बाढ़ के मौसम से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में मंगलपुर पुल का भी अवलोकन किया। यहाँ चल रहे बाढ़ नियंत्रण कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गोपालगंज को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 15 जून से पूर्व किसी भी परिस्थिति में कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर गोपालगंज जिले से बेतिया को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने मंगलपुर पुल के स्पाइन ज्वाइंट में दरार की बातें आई। बताया जा रहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया है, जबकि छोटे और हल्के वाहनों का परिचालन फिलहाल जारी है। पुल में दरार की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, SDPO अनिल कुमार, CEO रजत बर्णवाल, कुचायकोट के CEO मणिभूषण कुमार सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की है। इसके चलते बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों का परिचालन रोका गया है। हालांकि साल 2020 में बाढ़ और नदी के दबाव के कारण इसके पहुंच पथ में दरार आई थी, लेकिन बाद में इसे मरम्मत करके सुचारू कर दिया गया था। इसके संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए 2023-24 में भी नए सड़क निर्माण कार्य किए गए थे। जिलाधिकारी ने बताया है कि पुल के ज्वाइंट स्पैन में समस्या सामने आई है जो गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने इसकी जानकारी IIT पटना और तकनीकी विशेषज्ञों को भी दी है ताकि विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा सके। अब विशेषज्ञों की टीम पुल की स्थिति का आकलन करेगी और मजबूती तथा मरम्मत को लेकर आवश्यक सुझाव भी देगी। उसके बाद ही भारी वाहनों के परिचालन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस पुल के बनने से गोपालगंज से सीधे बेतिया की दूरी 120 किलोमीटर कम हो गई। इस महासेतु की लंबाई लगभग 1920 मीटर यानी 1 किलोमीटर 92 मीटर है। इस पुल निर्माण में लगभग 330 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस पुल के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और दूरी लगभग 120 किलोमीटर तक कम हो गई। मीरगंज नगर परिषद और हथुआ प्रखंड के सौरेजी ग्राम पंचायत में सीमा विवाद के बीच नरैनिया और राजापुर के लगभग 50 परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। ना तो ये लोग ग्राम पंचायत में हैं और ना ही नगर परिषद के क्षेत्र में हैं। मतदाता सूची में दोनों ओर से नाम इनका गायब हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ के 50 परिवार को सरकार के लाभ से फिलहाल वंचित होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत नगर परिषद क्षेत्र मानकर यहाँ का विकास कार्य नहीं करता, जबकि नगर परिषद कभी उस क्षेत्र को शहरी इलाके में शामिल ही नहीं करने की बात कह रहा है। अब नतीजा यह है कि यहाँ के लगभग 300 मतदाता वोट देने से भी वंचित रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि सौरेजी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 को नगर परिषद मीरगंज में विलय करना था, लेकिन नगर परिषद के परिसीमन के समय वार्ड संख्या 10 का केवल वह भाग जो राजापुर राजस्व ग्राम में आता है उसी को ही विलय किया गया। वार्ड संख्या 10 और 11 में रहने वाले 50 परिवार वार्ड को ग्राम पंचायत का हिस्सा बताकर छोड़ दिया गया।
वार्ड संख्या 10 के निवासी रिजवान अहमद, जयवीर पांडे, अमोद चौबे, अरविंद चौबे, वीर बहादुर सिंह, राकेश कुमार इत्यादि का आरोप है कि 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव के समय उन्हें यह कहते हुए ग्राम पंचायत चुनाव से अलग कर दिया गया था कि ग्राम पंचायत राज संवरेजी के नहीं है। अब वर्तमान में जब पंचायत आम निर्वाचन 2024 के लिए

0: प्रारूप प्रकाशित किया गया, तो इन लोगों का नगर परिषद में भी नाम नहीं है। अब ये सभी लोग परेशान हैं और प्रशासन के पास दौड़ लगा रहे हैं। BDO ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के नामों के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने के लिए यहाँ के वोटर उनके पास पहुंच रहे हैं और दावा भी पेश कर रहे हैं, पर BDO सुमित कुमार ने कहा कि वे ठीक नहीं कर सकते, आप लोगों को जहां जाना है वहां जाएं। ऐसी स्थिति को लेकर बहुत असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। नगर परिषद मीरगंज के द्वारा ग्राम पंचायत का हवाला देते हुए इसे छोड़ दिया गया और अब वर्तमान प्रकाशन में भी गाँव के लोगों को जनसंख्या और वोटर लिस्ट में लुप्त कर दिया गया है। हालांकि जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस मामले की जाँच होगी और इस संबंध में जांच कर उचित निर्णय भी लिया जाएगा। फुलवरिया थाना की पुलिस ने 20 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक टेम्पो भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ग्राम सेलार चौवर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। यहां टेम्पो को पकड़ा गया और इसके अंदर से 20 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसमें साजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के ईश्वर शाह का पुत्र बताया जा रहा है। दूसरा जावेद शाह, यह थाना पटेरवा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पिंडरा कनक का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर अब पुलिस ने इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार आरोपी अर्जुन महतो को गिरफ्तार कर लिया। यह सिवान जिले के बसंतपुर के रहने वाले शिवदेनी महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इसे गिरफ्तार कर आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कृषि अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा पूर्णिया के धमदाहा गांव में कृषि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों में संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित 87 किसान प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारियां दी गई। किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग करने के फायदे समझाए गए तो वहीं सामयिक पोषक तत्व प्रबंधन तथा मृदा परीक्षण आधारित खेती की व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान की गई। जादवपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त अरविंद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। यह जादवपुर के नवादा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रोशन कुमार को गिरफ्तार किया। यह हथुआ के रतन चक निवासी ब्रिज किशोर कुंवर का पुत्र बताया जा रहा है। इसके मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 47 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईंधन बचाने को लेकर पैदल ही अदालत पहुंचे आज सभी न्यायाधीशगण। ताइक्वांडो चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मंगलपुर पुल में आई दरार से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा दी गई रोक। सीमा विवाद को लेकर 50 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से हो गया गायब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: दोस्तों, यह है मेरा ओरिजिनल शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का वो सफर जिसमें आप और मैं चलते हैं यात्राओं पर और मिलते हैं उन पात्रों से, उन कहानियों से, जो शायद हम बचपन में सुना करते थे पर कहीं पीछे छोड़ आए। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी, ऐसी भावनाओं की कहानी जिनसे आप में से बहुत से लोग रिलेट करेंगे। एक ऐसे किरदार, एक ऐसे पात्र की कहानी जिसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया, कहा नहीं गया, इसीलिए यह कहानी सुनानी जरूरी है। चलिए शुरू करता हूं ये कहानी, जिसका नाम है एक थी उर्मिला। अयोध्या के राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ राजमहल ही नहीं, पूरी अयोध्या ही सूनी थी, खामोश नजर आ रही थी। न बच्चों के खेलने का शोर था, न सरयू के तट से पनिहारिनों की हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। पूरे राज्य ने जैसे उदासी की कोई चादर ओढ़ ली थी, और इस उदासी की वजह थी राजकुमार राम का 14 साल के वनवास पर जाने का फैसला। राम की सौतेली माँ कैकई ने जब उन्हें वन जाने के लिए कहा, तब उन्होंने उनकी बात मानने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। राम के साथ साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जा रहे थे। एक ही दिन में पूरा राज परिवार टूटता बिखरता नजर आ रहा था। राजा दशरथ खुद को संभाल नहीं पाए थे, वो राम का नाम लेते लेते बेहोश हो रहे थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा कभी अपने पति को संभालती तो कभी अपने बेटे राम और लक्ष्मण को वन जाने से रोकने की कोशिश करती। राजमहल के हर कोने, हर कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, और वो कमरा था राजकुमार लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का। मैंने देखा था जब कुछ देर पहले लक्ष्मण ने यहां आकर उर्मिला से अपने वन जाने की बात कही थी। उर्मिला कुछ देर बिल्कुल शांत खड़ी रही, फिर जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, उनसे पहले लक्ष्मण बोल उठे, हम वन में भैया और भाभी की सेवा पूरी निष्ठा से तभी कर सकेंगे जब आप यहीं राजमहल में रहें। उर्मिला अब भी चुप थी। कुछ देर पहले वो जो कहना चाहती थी वो कहे बिना चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। उर्मिला लक्ष्मण के इस बर्ताव से हैरान थे। वैसे हैरानी मुझे भी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आया कि उर्मिला अपने पति के फैसले में उनके साथ थी या उनसे नाराज। फिर कुछ देर बाद जब उर्मिला वापस कमरे में लौटी तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी। वो सीधा चौकी पर बैठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते लक्ष्मण के पास गईं और बिना कुछ कहे रुद्राक्ष की वो माला उनके जूड़े में लपेटने लगीं। लक्ष्मण अपने सामने लगे शीशे में उर्मिला के चेहरे को एक टक देखते रहे। शायद अपनी पत्नी के मन की दशा को उनके चेहरे के भावों से समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी लक्ष्मण को उर्मिला के चेहरे पर न उदासी के भाव दिखे और न ही कोई नाराजगी। वैसे सच कहूं तो मुझे उस वक्त उर्मिला में उस फौजी की पत्नी का अक्स नजर आ रहा था जो सरहद पर जाते अपने पति को लेकर फिक्रमंद तो होती है पर कभी जाहिर नहीं करती, जिसका मन पति से दूर रहने के दर्द से भरा होता है पर वो अपने आंसुओं को अपने पति की कमजोरी नहीं बनने देती। उर्मिला भी शायद यही कोशिश कर रही थी, पर जब लक्ष्मण ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, उर्मिला तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम्हारा ये मौन हमें पीड़ा दे रहा है, तब उर्मिला कुछ पल के लिए कमजोर पड़ती दिखी। वो अपने मन का सारा दर्द, पति के लिए फिक्र, उनसे दूर होने की पीड़ा, सब कुछ कह देना चाहती थी, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाने के लिए वो लक्ष्मण की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, सुमित्रा नंदन, आपके निर्णय का विरोध होता तो आपके साथ वन जाने के लिए तैयार खड़ी होती। उर्मिला के इस जवाब ने लक्ष्मण के सर से जैसे कोई बोझ उतार दिया था। अब वो बिना किसी अपराध बोध के अपने भाई भाभी का साथ देने वनवास पे जा सकते थे। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण उर्मिला के सामने गए और उनको अपनी बाहों में भर लिया। उर्मिला ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वो उस स्पर्श को और उस पल को कैद करके रख लेना चाहती थी, ताकि अगले 14 बरस इन यादों के सहारे खुद को टूटने और कमजोर पड़ने से बचाती रहे, क्योंकि वो जानती थी कि उनका टूटना बहुत से लोगों को बिखेर देगा और उर्मिला ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी। शायद तभी जब अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से दूर वन के लिए निकल रहे थे, तब हर अयोध्यावासी की आंखें नम थी सिवाय उर्मिला के। मैं देख रहा था कि वो कभी रो रो कर बेहाल हुई रानी कौशल्या और सुमित्रा को संभाल रही थी, तो कभी बेहोशी की हालत में अपने कमरे में लेटे राजा दशरथ को, वो जो बार बार होश आने पर राम को अपने सामने लाने की जिद कर रहे थे। उर्मिला हर बार मुस्कुराते हुए उन्हें राम के वापस आने का भरोसा दिला रही थी, और दशरथ उनकी आंखों में झलकती उम्मीद पर भरोसा करके वापस बिस्तर पर लेट जाते थे। वैसे उर्मिला से दूर होना लक्ष्मण के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें कभी पेड़ों से छन कर आती हवा में उर्मिला की हंसी सुनाई देती, तो कभी रात के सन्नाटे में पलकें बंद करते ही उनका चेहरा दिखता। शायद इसीलिए लक्ष्मण ने रात को सोना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर राम और सीता की सेवा में लगे रहते और रात भर जाग कर कुटिया के बाहर पहरा देते थे। लेकिन जो मन में बसा हो उसे भुलाना आसान नहीं होता। तभी तो उस दिन जब वो लकड़ियां लेकर कुटिया की ओर लौट रहे थे, तो अचानक ही तालाब में खिले कमल को देखकर रुक गए। उन फूलों ने लक्ष्मण को उर्मिला का मुस्कुराता चेहरा याद दिला दिया। शादी के बाद उन्होंने ऐसे ही कमल पुष्पों की माला उर्मिला को तोहफे के रूप में दी थी। जानते थे कि उर्मिला को कीमती गहनों से ज्यादा फूलों से प्यार था और कमल का फूल तो उन्हें सबसे प्रिय था। फिर चाहे उर्मिला कितनी भी नाराज हो, कमल के फूलों को देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। पर शायद लक्ष्मण ये नहीं जानते थे कि उनके वन जाने के बाद मुस्कुराहट उर्मिला के चेहरे का रास्ता भूल गई थी। मैंने देखा था उर्मिला को बागीचे में पौधों को पानी देते। साज श्रृंगार से प्यार करने वाली उर्मिला के बाल बिखरे हुए थे, न बालों में गजरा था, न आंखों में काजल और न होठों पे कोई लाल रंग। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खुद को आईने में देखा ही न हो। वैसे उर्मिला ने अपने लिए वक्त ही कहां छोड़ा था। वो अपना सारा वक्त राजमहल के इंतजाम में लगा देती थी, राज परिवार के खाने से लेकर साफ सफाई तक के सारे काम उर्मिला अपनी निगरानी में करवाती थी और उस दिन बागीचे में पानी देने भी खुद ही आ गई थी। उर्मिला ने खुद को तो भुला दिया था पर लक्ष्मण की याद हर पल हर क्षण उनके साथ थी। तभी तो पौधों में पानी देते देते बागीचा कब तालाब में तब्दील होने लगा इसका पता उर्मिला को तब चला जब दूर खड़ी एक दासी ने उनको आवाज दी। उर्मिला अपने भीगे हुए कपड़े बदलने जब कमरे में पहुंची तो देखा एक दासी उनके बिस्तर की चादर बदलने जा रही थी। उन्होंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? दासी घबरा कर पीछे हट गई और सर झुका कर बोली, राजकुमारी जी हम तो बस ये चादर बदल रहे थे। नहीं, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, 14 वर्षों तक हमें इस कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, उर्मिला ने कुछ तेज आवाज में कहा था। दासी उसी वक्त कमरे से बाहर चली गई। उर्मिला ने उस आधी बिछी और आधी बिखरी चादर को फिर से ठीक किया और गीले कपड़े बदल कर उस पर लेट गई। लक्ष्मण को वन गए कई दिन बीत गए थे पर चादर से आती उनके इत्र की खुशबू उर्मिला को आज भी महसूस हो रही थी। यही नहीं, वन जाने से पहले लक्ष्मण ने जो कपड़े पहने थे वो आज भी संदूक के ऊपर वैसे ही रखे थे। उर्मिला ने न उनको धोबी को धोने के लिए दिया था और न ही संदूक के अंदर रखा था। सिर्फ ये चीजें ही नहीं, कमरे की खिड़की के पास कुछ रंग और एक अधूरी तस्वीर भी रखी थी। ये तस्वीर लक्ष्मण की थी जिसे उर्मिला खुद बना रही थी। रंगों से बहुत लगाव था उनको। एक दिन जब लक्ष्मण ने उनको चिढ़ाते हुए कहा, हम तो आपको चित्रकार तभी मानेंगे जब आप हमारा कोई चित्र बनाएंगी, बस उसी दिन से उर्मिला छिप छिप कर ये तस्वीर बना रही थी। सोचा था कि शादी की अगली वर्षगांठ पर लक्ष्मण को उपहार के तौर पर देंगी। उस वक्त नहीं जानती थी कि अगले 14 साल शादी की हर वर्षगांठ पर वो अकेली होंगी, अधूरी होंगी, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। उर्मिला बिस्तर पर लेटे लेटे उस तस्वीर को देख रही थी। उसी वक्त एक दासी घबराई हुई दौड़ते हुए उनके पास आई। राजकुमारी, वो महाराज, क्या हुआ पिताश्री को? दासी के मुंह से महाराज दशरथ का नाम सुनते ही उर्मिला बिस्तर से उठ गई। दासी उनके पूछे सवाल का कोई जवाब देती इससे पहले ही वो दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उर्मिला जब महाराज दशरथ के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो बिस्तर से नीचे गिरे हुए थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा सेवकों की मदद से उनको उठाकर बिस्तर पर लिटा रही थीं। उर्मिला ने बिना एक पल गंवाए राज्य वैद्य के पास बुलावा भेज दिया और फिर खुद अपने ससुर के सरहाने बैठकर उनकी हथेली मलने लगी। आंखें बंद किए दशरथ बस राम का नाम लिए जा रहे थे। उर्मिला ने पहले की तरह एक बार फिर उनको राम के वापस आने का भरोसा दिलाना चाहा, पर इस बार देर हो चुकी थी। एक आखिरी सांस के साथ ही राजा दशरथ की हथेली उर्मिला के हाथों से फिसल गई। 4 पुत्रों के होते हुए भी जब राजा दशरथ ने आखिरी सांस ली उस वक्त उनके पास कोई नहीं था। राम और लक्ष्मण वनवास पे गए थे और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल। पिता की मौत का समाचार मिलने पर भरत जब अयोध्या लौटे तो यहाँ एक और दुख उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी माँ ने उनको राजा बनाने के लिए उनके बड़े भाई राम को वनवास पे भेज दिया तो वो बहुत नाराज हुए। अपनी माँ के किए अपराध के लिए भरत खुद को ही दोषी मानने लगे। उन्हें पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो पूरे परिवार के साथ वन जाएंगे और राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। महाराज दशरथ की मौत से दुखी परिवार को खुशी की एक किरण नजर आई थी। कौशल्या और सुमित्रा की आंखों में अपने बेटों से मिलने की चमक साफ दिख रही थी। एक उम्मीद उर्मिला के मन में भी जागी थी, लक्ष्मण और उनका वियोग खत्म होने की उम्मीद। उस सुबह उर्मिला बहुत दिनों बाद आईने के सामने बैठी थी। दासी जब उनके बाल बनाने आई तो उन्होंने उसे रोक दिया, फिर खुद ही अपने बालों में बेला के फूलों की माला सजाने लगी। आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग, उस दिन उर्मिला एक नए ही रूप में दिख रही थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आईं तो उन्हें देखते ही सुमित्रा ने उनके माथे पर काला टीका लगा दिया था। डर रही थीं कि कहीं उनकी बहू की उम्मीद उसकी खुशी को किसी की नजर न लग जाए। चार दिनों की यात्रा के बाद पूरा राज परिवार चित्रकूट पहुंचा था। वहां वन में राम अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। सीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थीं और कुछ ही दूर पर लक्ष्मण कुल्हाड़ी से लकड़ियों के टुकड़े कर रहे थे। वहां पहुंचकर जब भरत और पूरा परिवार राम को अयोध्या चलने के लिए मना रहा था, तब सबकी नजरें बचाकर उर्मिला लक्ष्मण के पास पहुंच गईं और फिर अपनी ओढ़नी के कोने से उनके माथे पर आया पसीना पोंछने लगीं। उस वक्त न लक्ष्मण ने उनसे कुछ कहा और न उन्होंने लक्ष्मण से कुछ पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने एक दूसरे की आंखों से ही एक दूसरे के दिल का हाल जान लिया था। कुछ देर बाद उर्मिला ने अपने साथ लाए थैले से एक बर्तन निकाला और लक्ष्मण की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मण ने कपड़े से ढके उस बर्तन को खोलकर देखा तो उसमें खीर थी, उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन। उन्होंने बर्तन को वापस कपड़े से ढका और एक और रख दिया। फिर उर्मिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भैया और पिताजी को दिया वचन पूरा किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। हमें 14 वर्ष बीतने का इंतजार करना ही होगा। ये सब कहते हुए लक्ष्मण की आंखें लगातार उर्मिला की आंखों में उतर आई तकलीफ को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, पर वो एक बार फिर असफल रहीं। ये जनक दुलारी अपनी खुशियां तो सबसे साझा कर लेती थीं, पर अपने मन में भरा दर्द किसी तक नहीं पहुंचने देती थीं। उधर भरत राम को वापस चलने के लिए मनाने में नाकाम रहे। पूरा परिवार जिस उम्मीद से वहां गया था वो टूट गई। सभी को खाली हाथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा सिवाय उर्मिला के। उर्मिला के हाथ में लक्ष्मण का दिया एक मोरपंख था। लक्ष्मण ने यह मोरपंख वापस लौटती उर्मिला की हथेली में धीरे से थमा दिया था। वो सिर्फ एक मोरपंख नहीं था, लक्ष्मण के उनके करीब होने का एहसास था जो अब हर वक्त उर्मिला के साथ रहता था। वो कभी कभी उसे अपने गालों पर फिराती तो कभी सरहाने रख के सो जाती। कमरे में रखी उस अधूरी तस्वीर में भी वो उस मोरपंख से रंग भरने लगी थी। लक्ष्मण के वहां न होने पर भी उर्मिला ने उनके होने का एहसास ढूंढ लिया था। लेकिन सुमित्रा को अपनी बहू की खामोशी, उसका हर वक्त खुद में खोए रहना परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन वो अपने मन की बात कहने उर्मिला के पास पहुंच गई। उस वक्त उर्मिला कमरे की खिड़की के पास खड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर देख रही थी। सुमित्रा धीरे से उनके करीब गई और अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। पुत्री, तुम लक्ष्मण से बिछड़ने की पीड़ा बाहर क्यों नहीं आने देती? अपने आंसुओं को बांध कर क्यों रखा है? निकल जाने दो सारा दुख, मन शांत हो जाएगा। सुमित्रा के सवालों को सुनकर उर्मिला कुछ देर खामोश रही, फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मां, आपके पुत्र तो हर समय हमारे मन में है, तो फिर बिछड़ना कैसा, आंसू किस लिए? और दक्षिण दिशा तो हर समय हमारे नेत्रों के सामने है, फिर उनसे दूरी कैसी? बस इतना कहकर उर्मिला फिर से खिड़की की ओर बढ़ गईं और उनकी आंखें दक्षिण की ओर देखने लगीं। उस दिशा की ओर ही तो था चित्रकूट, जहां लक्ष्मण राम सीता के साथ वनवास के दिन काट रहे थे और वो इतनी दूर से ही उनको अपने करीब महसूस कर रही थी। खुद को दी हुई चुनौती उर्मिला ने जीत ली थी, अपने वियोग को अपने प्रेम से हरा दिया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं इसमें अपनी जिंदगी भी थोड़ी थोड़ी नजर आई होगी। और अगर किन्हीं कारणों से आप अपने प्रिय से, अपने पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति या पत्नी से दूर रहते हैं, तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी थोड़ी सी जिंदगी नजर आई होगी। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, हम फिर से चलेंगे ऐसी ही एक और नई यात्रा पर, जिसमें मैं आपको एक और माइथोलॉजिकल कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
6: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
16: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
17: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
18: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
17: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
16: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
17: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
16: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
17: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
16: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
19: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
19: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
22: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
21: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
22: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
23: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
24: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
23: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
24: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
25: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
24: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
25: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
24: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
25: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
26: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम 8:00 से 2:00 PM तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3092 या 90765-65750।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 62052।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे तुम्हें।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी।

0: अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक

0: समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ यह उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोक सत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
3: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
3: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
3: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
14: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
15: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
14: तो देर मत कीजिए,
15: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करें 87894 18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए AI नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को AI हब बनाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही AI नीति बनाई जाएगी। उन्होंने पटना में 2 दिवसीय बिहार AI समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि AI का इस्तेमाल बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
1: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो या हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है। और AI ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी IT डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम AI के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि AI के माध्यम से बिहार देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को AI का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्पादन में बढ़ोतरी लाना लक्ष्य है।
2: अभी जो योजना है नहरों का पुनर्स्थापन भी होगा, उसमें कुछ कृषि कार्य में जो किसानों के आवागमन के सुविधा के लिए कलवर्ट बनाने हैं वो भी हम लोग बनाएंगे, और भी जो किसानों के हित के लिए है कुछ सड़क बनाना है उसको भी हम बनाएंगे, जिससे न सिर्फ सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि कृषि उपज को बाजारों तक ले जाने में भी सुविधा मिलेगी।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की NDA सरकारें समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और उनके ही बल पर पार्टी का विस्तार हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला वैचारिक संगठन भी है। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बिहार विधान परिषद में जदयू के ललन सर्राफ और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सदन का उपनेता मनोनीत किया गया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुशंसा पर इन नेताओं को उपनेता की मान्यता दी है। वहीं सभापति ने संजय सिंह को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक जबकि जनक राम को उप मुख्य सचेतक बनाया है। नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक मनोनीत किया गया है। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 15वीं विधानसभा में ओबरा से सदस्य रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी गई है और सदस्यों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सोम प्रकाश सिंह 2010 में औरंगाबाद जिले के की ओबरा विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे जदयू उम्मीदवार प्रमोद चंद्रवंशी ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2014 में पटना उच्च न्यायालय ने सोम प्रकाश सिंह के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली 28 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधानसभा सचिवालय ने सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आगामी 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी उनकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगी। युवा रोजगार और कौशल विभाग पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मोक्ष धाम बनाएगी। इसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रत्येक शवदाह गृह के निर्माण में 22 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण 7 निश्चय 3 के तहत किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि अंतिम संस्कार के 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र परिजनों को दे दिए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश का दक्षिणी भाग लगातार लू की चपेट में चल रहा है, हालांकि उत्तर बिहार में नमी युक्त हवा से थोड़ी राहत है। पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। औरंगाबाद, भभुआ और बक्सर में लू की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गर्म स्थान डेहरी रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.5, शेखपुरा का 43.2, औरंगाबाद का 43.1 और गया का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी भाग का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। दूसरी तरफ प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी दी गई है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है।
2: दिनांक 24 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में व्यापारिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के आर्थिक विकास में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार, उद्योग जगत और समाज के बीच मजबूत साझेदारी से ही विकास को गति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में 11,000 संपर्क विहीन बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 14,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान चलाकर छूटी हुई बसावटों की पहचान की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे शुरू होगा। इधर कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। रांची में आयोजित 29वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में बिहार के विभास्कर कुमार ने चौथा स्थान प्राप्त किया। विभास्कर ने 10.39 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की। वहीं पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। आप पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पटना में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 96 रुपए के पार। दैनिक जागरण मौसम की खबर पर लिखता है, झुलसा रही गर्मी, 40 के पार हुआ पटना सहित 13 शहरों का तापमान। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, नीतीश कुमार को मिलेगा वीवीआईपी प्रोटोकॉल, अब रनवे तक जाएगी गाड़ी। प्रभात खबर ने राज्य सरकार के निर्णय पर लिखा है, नीट यूजी में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा। आज अखबार की सुर्खी है, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय सागर ने कृषि मंत्री विजय सिन्हा के हवाले से लिखा है, एग्री एटेक के तहत 86,00,000 किसानों के निबंधन का लक्ष्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एआई नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003। सुनिए
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के

0: लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
5: हमने एक ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहां कठोर मौसम है, जहां अनजान नजारे हैं और जहां हमेशा कुछ ना कुछ अजीब घटता रहता है। यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। जब धरती बनी, यहां पर हालात नरक जैसे थे।
6: अगर बीते समय में जाना मुमकिन होता तो 4.5 अरब पुरानी धरती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते।
5: वो कौन सी भाग्यशाली घटनाएं थी जिन्होंने धरती को उसका मौजूदा स्वरूप दिया?
7: अगर डायनासोर्स का खात्मा नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते।
5: आखिर मानव जाति का भविष्य क्या है?
8: ये तो निश्चित है कि भविष्य में बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना होगी, जैसा कि अतीत में भी हो चुका है।
5: तो आखिर में धरती का क्या होगा?
9: कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आखिर में धरती घूमते घूमते खौलते हुए सूरज से जा टकराएगी और उसमें समा जाएगी।
5: आज पृथ्वी की रचना और उसकी तबाही।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
5: पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि कभी यह ग्रह अस्तित्व में नहीं था और भविष्य में किसी दिन यह अस्तित्व में नहीं रहेगा। ग्रह भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है। तो धरती कैसे खत्म होगी और कैसे उसके असाधारण जन्म के कारण उसने इतने अनोखे ग्रह की शक्ल ली, जहां पर जीवन के पनपने के सही हालात बन पाए? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे हालात का बनना जरूरी नहीं था। खुशकिस्मती से ऐसी कम से कम 6 जबरदस्त घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने धरती को एक फलते फूलते ग्रह में बदल दिया।
11: धरती के वर्तमान रूप के पीछे कुछ खास कुदरती तंत्र हैं और कुछ जबरदस्त घटनाएं हैं। अगर वो सब उस सिलसिले में नहीं होता जैसा हुआ तो धरती का रूप बहुत अलग होता, आज जैसा बिल्कुल नहीं होता।
5: एक खास बात है जो सिर्फ पृथ्वी में है। यह सौर मंडल का वो इकलौता ग्रह है जहां जटिल जीवन के पनपने के लिए सही तापमान है। पर यह कैसे मुमकिन हुआ और हम इस सही स्थान पर कैसे पहुंचे? ये सिलसिला करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुआ, जब गैस और धूल को ग्रेविटी ने एकजुट किया। ये इंटरस्टेलर गैस और धूल बादल की शक्ल में थी। इस बादल का ज्यादातर अंश बीच में जाकर जमा हो गया, जिससे तारे की बनावट हुई, जिसने बाद में सूरज की शक्ल ली। इस नवजात सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने भीतर समेट लिया और जो गैस और धूल बची उसने सपाट होकर एक डिस्क का रूप ले लिया। धूल और चट्टानों की घूमने वाली इस बनावट को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं।
11: हो सकता है शुरुआत में घूमने की प्रक्रिया धीमी रही हो, पर जैसे जैसे इस

0: इसका घनापन बढ़ता गया तो कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई। लगातार चक्कर लगाने की वजह से ये डिस्क समतल होने लगी और फिर आखिर में सभी ग्रह लगभग एक ही सतह पर चक्कर लगाने लगे।
1: इसे पिज्जा बेस की तरह समझ सकते हैं, जिसे बनाते वक्त घुमाया जा रहा हो, जिस एक्सिस पर वो घूमता है वहाँ वो दबने लगता है और डिस्क का रूप ले लेता है। हमारे सौर मंडल में सूरज के चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह इस सार्वजनिक डिस्क में रहकर पकड़ते हैं और ये हमारे सौर मंडल का प्लेन है।
2: उनमें से ग्रह एक बहुत ही विशेष क्षेत्र में जन्म लेता है और वो ग्रह है हमारी धरती, और उसके इस क्षेत्र में जन्म लेने की घटना उन छह भाग्यशाली घटनाओं में से पहली वाली है, जिनसे भविष्य में ये एक बेहद अनोखा ग्रह बनेगा।
3: धरती सूरज से बिल्कुल सही फासले पर थी, जिससे पानी अपने तरल रूप में रह सका। ये बहुत ही अहम बात है। धरती समंदर से ढकी हुई है, इस तरल पानी की वजह से ही यहाँ जीवन संभव हो पाया।
2: जिस क्षेत्र में धरती का जन्म हुआ उसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है।
3: इस क्षेत्र में होने के कारण धरती ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी, जैसा कि गोल्डीलॉक्स और तीन भालू वाली कहानी में है। धरती पर सही तापमान होने की वजह से ही पानी तरल रूप में रह पाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म संभव हो पाता है।
1: वीनस रहने लायक क्षेत्र के भीतरी किनारे पर है, पर वहाँ सूरज का प्रकाश इतना तेज है और इस वजह से मार्स जम गया, जबकि वीनस के साथ उलट हुआ, वो गर्म हो गया पर धरती का तापमान सही रहा। ये वो जगह बन गई जहाँ जीवन का पनपना संभव बन सका।
4: ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी धरती गोल्डीलॉक्स जोन में है। सौर मंडल को स्केल करते हैं। चलिए ये मानते हैं कि सूरज यहाँ इस गोल लाइन पर है और मेरा ये एक कदम अंतरिक्ष में करीब 16 लाख किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह मर्क्यूरी सूरज से 11 मीटर दूर है, वीनस करीब 20 मीटर दूर, पृथ्वी 28 मीटर और मार्स करीब 43 मीटर दूर है, और जुपिटर करीब 146 मीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। ये फासला करीब 1.5 फुटबॉल के मैदान जितना हुआ। सैटर्न करीब 275 मीटर दूर है, करीब 3 फुटबॉल के मैदान जितना, और यूरेनस करीब 550 मीटर दूर है, करीब 6 फुटबॉल मैदान जितना। अगला ग्रह है नेपच्यून, वो करीब 800 मीटर दूर है। गोल्डीलॉक्स जोन करीब 23 मीटर का वो क्षेत्र है जो वीनस और मार्स के बीच है। वो हमारे सौर मंडल का एक बहुत छोटा सा भाग है। पृथ्वी इस भाग के एक तिहाई हिस्से में मौजूद है। इस खास क्षेत्र में होना हमारा सौभाग्य है।
2: पर जीवन को संभव बनाने के लिए किसी ग्रह में एक और चीज बेहद जरूरी है, एक स्थिर भरोसेमंद वातावरण। पर किसी ग्रह में स्थिरता कैसे आती है, ये जानने के लिए हमें करीब 4 अरब साल पहले धरती के अतीत में जाना होगा। तब अंतरिक्ष का एक हमलावर धरती को तबाह करने की फिराक में था।
3: पृथ्वी को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तब एक बेहद विशालकाय गोलाकार चीज पृथ्वी से टकराई थी। वैज्ञानिक मानते हैं वो मार्स जितनी बड़ी थी।
2: पर वास्तव में ये तबाही ना होकर पृथ्वी पर होने वाली दूसरी भाग्यशाली घटना थी।
1: मार्स के आकार वाली इस गोलाकार चीज के टकराव ने हल्के पदार्थों के बने सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन टुकड़ों ने धरती के चारों ओर फैलकर एक विशाल छल्ले का रूप ले लिया। हल्के पदार्थों के बने इस छल्ले से आखिरकार चंद्रमा की बनावट हुई। अगर वो टकराव ना हुआ होता तो आज हम भी ना होते।
2: इस अनोखे ढंग से जन्म लेने के कारण पृथ्वी का चंद्रमा ग्रह के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। फलस्वरूप चंद्रमा की ग्रेविटी इतनी तेज है कि वो धरती को उसकी ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देगी।
0: घूमते वक्त धरती का अपनी एक्सिस यानी धुरी पर झुकाव होता है, और घूमते वक्त धरती काफी डगमगा सकती थी, पर चंद्रमा की वजह से ऐसा नहीं होता क्योंकि वो स्थिरता प्रदान करता है। ये हमारी मौसम प्रणाली, जलवायु और वातावरण से जुड़े अन्य पहलुओं के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया।
1: पृथ्वी के झुकाव के कारण ही धरती पर अलग अलग मौसम है। नॉर्थ पोल की दिशा हमेशा पोलारिस की ओर रहती है। गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की ओर होता है और इसी वजह से गर्मियों का मौसम होता है। पर 6 महीने बाद धरती घूमते घूमते सूरज की दूसरी ओर पहुंच जाती है, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दिशा पोलारिस की तरफ ही रहती है, जबकि इस दौरान उसका झुकाव सूरज से उलट दिशा में होता है और इसी वजह से सर्दियां आ जाती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा बड़े आकार का है, इससे उसके झुकाव में स्थिरता बनी रहती है। देखा जाए तो फिलहाल मार्स का झुकाव भी करीब करीब पृथ्वी के समान ही है, पर बड़े आकार का चंद्रमा न होने की वजह से उसका झुकाव डगमगाता है और पिछले कई सालों से बदलता रहा है।
3: अगर हमारे पास ऐसा चंद्रमा नहीं होता

0: तो मौसमों में ना नियमितता होती और ना ही स्थिरता, ना ही क्रम से चलने वाले वो सिलसिले बन पाते जिनमें जीवन ने खुद को ढाला है, क्योंकि जीवन को स्थिरता पसंद है।
1: पर करीब 4 अरब साल पहले जब चंद्रमा की बनावट हुए कुछ ही समय हुआ था, तब पृथ्वी बेजान थी और चारों तरफ सिर्फ खौलती पिघलती चट्टाने थी। पर समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस बन गई। पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से वातावरण जहरीला था और जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तत्व अभी भी मौजूद नहीं था, पानी। और अब एक और महाप्रलय धरती को एक बार फिर से तबाह करने वाला था।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
11: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
10: तो देर मत कीजिए,
11: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
1: ग्रहों को देखकर लगता है कि वो जीवन और मृत्यु से परे हैं, पर वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले एक विनाशकारी टकराव से पृथ्वी को एक नया जन्म मिला। इस टकराव ने पृथ्वी को तबाह करने की बजाय चंद्रमा की बनावट की। ये बनावट आगे चलकर मौसमों में स्थिरता पैदा करने वाली थी। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पर आखिर धरती को पानी कहाँ से मिलेगा?
0: धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ साल बाद हमारे पर मीटियोर की बौछार सी हो गई। ये मीटियोर सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं।
1: करोड़ों साल तक धरती पर कहर लगातार जारी रहा। एस्टेरॉयड और कॉमेट की जबरदस्त बमबारी चलती रही, पर इस जबरदस्त बमबारी के आखिरी दौर ने पृथ्वी पर होने वाली 30वीं भाग्यशाली घटना को मुमकिन बनाया, क्योंकि कॉमेट और एस्टेरॉयड अपने साथ पानी भी लाते हैं।
12: लेट हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड की खासियत ये थी कि उस दौरान धरती पर कुछ मात्रा में पानी पहुंचा, जिसके बिना धरती पर जीवन नहीं पनप सकता था।
1: करोड़ों सालों में युवा धरती पर काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों और बादलों की बनावट हुई और इस तरह धरती पर मौसमों की शुरुआत हुई। भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण ने धरती के वातावरण को रच दिया था। बेशक ऐसा वातावरण मनुष्य और पशुओं के लिए जहरीला साबित हो सकता था, पर अब धरती में वो सारे

0: तत्व मौजूद थे जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थे, जैसे कि एक सेल वाला जीव बैक्टीरिया।
1: हमें ये नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कहाँ, कब और कैसे हुई, पर हमारा मानना है कि इसकी शुरुआत लगभग 370 से 350 करोड़ साल पहले हुई थी, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट के ठीक बाद।
0: उस वक्त धरती पर हालात नरक जैसे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसाते थे। इतने मुश्किल हालात में किसी भी जीव का विकसित होना, उसका पनपना कल्पना से परे की बात थी। पर 1991 में वैज्ञानिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोज की जो वहां फल फूल रहा था और साथ साथ वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को बतौर खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये उस खास तरह के फंगस की जीती जागती मिसाल थी जिसे एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। ये जीव ऐसी जगह पर पनपता है जहां ज्यादातर प्राणियों के लिए रहना घातक होता है। 80 के दशक से वैज्ञानिक ऐसे जीवों की निरंतर खोज कर रहे हैं जो येलोस्टोन नेशनल पार्क के गीजर्स में पनप रहे थे और गहरे समंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट में विकसित हो रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अरबों साल पहले की कठोर परिस्थितियों में धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ। ये जीवन का सिलसिला शायद ज्वालामुखी की सुराखों में शुरू हुआ।
1: हम सभी जीवों के जेनेटिक इतिहास से पृथ्वी के उस दौर को समझ सकते हैं। सभी सुराग इशारा करते हैं ऐसे कई जीव की ओर जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हमारा वो पूर्वज जीवन का वो रूप है जिसमें से धरती पर रहने वाले अलग अलग जीव विकसित हुए हैं। हमारे उस पूर्वज को गर्मी बहुत पसंद थी, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद जीवन का विकास बेहद गर्म वातावरण में हुआ, जैसे कि किसी ज्वालामुखी के मुंह के पास। ऐसा किसी गहराई वाले तालाब में होना मुश्किल है क्योंकि वहाँ वातावरण इतना गर्म नहीं होता।
0: पर धरती को आज के शक्ल में आने के लिए ऐसे हालात चाहिए थे जहाँ जटिल जीवन पनप सके, पर उसके लिए धरती के वातावरण में एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत थी। उसके लिए धरती को ऑक्सीजन चाहिए थी, पर वो आएगी कहाँ से?
2: धरती के शुरुआती दौर का वातावरण आज के दौर से बिल्कुल अलग था। अगर बीते समय में जाना मुमकिन होता तो 4.5 अरब साल पुरानी धरती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते थे।
1: उस समय धरती का वातावरण बहुत ही अलग था, तब ऑक्सीजन नहीं थी, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड थी और जीवन ने उस वातावरण में खुद को ढाल लिया था। पर फिर कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। बैक्टीरिया का एक प्राचीन रूप विकसित हो गया। उसने सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इस एडाप्टेशन के कारण, इस नई काबिलियत की वजह से ये बैक्टीरियम सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके ऊर्जा में बदल सकता था।
0: इस नई प्रक्रिया से गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा, ऑक्सीजन। हालांकि बैक्टीरिया की उस खास प्रजाति का हर सदस्य ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा पैदा करता था, पर लंबे अरसे के बाद अरबों बैक्टीरिया ने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से लबालब कर दिया। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण की ये रचना पृथ्वी को मौजूदा रूप देने वाली चौथी भाग्यशाली घटना थी। इस खास लम्हे के निशान धरती पर चारों ओर दर्ज हैं।
2: हमारे पास ये चट्टान का नमूना है जो लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। आप यहाँ नीचे की तरफ देखिए और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो चमकदार लाल धारियाँ नजर आ रही हैं, इन्हें हम बैंडेड आयन फॉर्मेशन कहते हैं। और ये लाल वाला हिस्सा आयन ऑक्साइड है, यानी जंग लगा लोहा। और जंग ऐसे युग में लगा होगा जब वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन होगी जो लोहे को जंग में बदल सकी।
0: बेशक वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी, पर अभी भी जीवन समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ था। सूरज की घातक रेडिएशन उन जीवों के लिए जानलेवा हो सकती थी जो समंदर से बाहर आने की हिम्मत करते।
3: तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की सुरक्षा ना के बराबर थी। अगर धरती का आकार इस सेब जितना है तो उस समय की सुरक्षात्मक परत इस सेब के छिलके से भी पतली थी। खुशकिस्मती से अब ओजोन लेयर है जो कवच की तरह धरती को सूरज की घातक रेडिएशन से बचा रही है।
1: जब तक वायुमंडल में ओजोन लेयर की बनावट नहीं हुई थी तब तक धरती की सतह पर जीवन के पनपने की संभावना नहीं थी क्योंकि रेडिएशन की वजह से वातावरण बेहद घातक था। पर जब कवच के रूप में ओजोन लेयर उभरी तो जीवन ने समंदर से जमीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया।
0: ओजोन लेयर धरती को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, पर इसके अलावा धरती के पास एक अदृश्य ढाल भी है जो उसे आसमान में छिपे हुए कुछ और खतरों से बचाती है। सौर तूफान और हवाओं की जबरदस्त वेव्स धरती से टकराकर चार्ज्ड पार्टिकल्स की बौछार करती हैं। ये बौछार जीवों में कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकती है। किसी विशाल बार मैग्नेट की तरह धरती का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो उसके ध्रुवों से फैलकर छतरी जैसा काम करता है। वो धरती पर आने वाली घातक बौछारों को वापस लौटा देता है।
4: सौर हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं, पर धरती का सुरक्षा कवच हमें उसके असर से बचाता है। अगर ये कवच ना होता तो सौर हवाएं धरती के वातावरण को छलनी कर देती, वो उसे बेहद हल्का करके उसका वजूद मिटा देती। इसका असर धरती के सभी जीवों पर पड़ता।
1: अगर धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सौर तूफान और सौर हवाओं के पार्टिकल्स धरती के सतह पर आसानी से पहुंच जाते और हम घातक रेडिएशन के शिकार हो जाते।
0: धरती के चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन लेयर पृथ्वी पर होने वाली पांचवी भाग्यशाली घटना थी, पर विकास का सफर हमेशा आसान नहीं होता। देखा जाए तो जीवन की कहानी मृत्यु की कहानी भी है। 15 करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर का राज था, फिर अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई। एक बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट धरती से अटकराया। यह घटना मेक्सिको के तट के पास हुई थी।
5: हालांकि धरती से टकराने वाली इस चट्टान की चौड़ाई सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास थी, पर इस घटना से पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इस टकराव की वजह से चारों ओर धूल छा गई जिसने सूरज को छिपा दिया और दुनिया भर में सर्दियां छा गई। इसके अलावा पूरी दुनिया में जगह जगह आग लग गई और टाइडल वेव्स उठ गई और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा शुरू हो गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि चट्टानों में छिपी कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो गई होगी और बाद में पानी के साथ मिलकर उसने एसिड रेन का रूप ले लिया होगा। महाप्रलय मचाने वाले इस टकराव के बाद पृथ्वी पर नर्क जैसे हालात थे, तो 6.5 करोड़ साल पहले धरती बहुत बुरे हाल में थी।
0: पर ये महाप्रलय वो छठी भाग्यशाली घटना थी जिससे उस धरती की रचना होगी जिस पर मानव जाति का राज होगा।
1: डायनासोर का राज खत्म होते ही प्राणियों के एक नए समूह को अपना जोर दिखाने का मौका मिला। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। अगर डायनासोर का खात्मा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते।
0: ये जीव छछुंदर से भी छोटे थे। आगे चलकर इन जीवों की प्रजाति विकसित हुई और इसने हजारों तरह के स्तनधारियों का रूप ले लिया जिसमें इंसान भी शामिल थे जो एक दिन इस ग्रह पर राज करेंगे। इंसान को धरती पर बसे करीब 2 लाख साल हो चुके हैं। जिन भाग्यशाली घटनाओं का सिलसिला हमें यहां तक ले आया, जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही कुछ हो। आखिर मानव जाति की हुकूमत कब तक चलेगी? क्या मानव जाति के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा डायनासोर के साथ हुआ?
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड। और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एचपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करे 85070-32042 पे।
15: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
16: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
15: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
0: इंसान बाकी प्रजातियों से अलग है, वो सिर्फ ऐसे ग्रह पर विकसित हो सकता है जहाँ पर हालात एकदम सही हों, जहाँ का तापमान पानी को तरल बनाए रखे, जहाँ एक बड़ा चंद्रमा ग्रह की ऑर्बिट को स्थिर रखे और जहाँ का सुरक्षा कवच उसे घातक रेडिएशन से बचाए रखे। पर जिन हालात की वजह से मानव जाति पनप सकी, क्या वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे?
17: ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम खुद को तबाह कर सकते हैं। ये परमाणु संबंधी तबाही हो सकती है, या फिर ये कोई जैविक या रासायनिक युद्ध हो सकता है, या फिर कोई ऐसा फ्लू या प्लेग हो सकता है जिससे धरती पर फैलने से रोकना शायद इतना आसान ना हो, जिसके खिलाफ मानव जाति कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती।
18: अगर मानव जाति ने अपने अस्तित्व के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा किया है तो वो है जरूरत से ज्यादा आबादी। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती पर मानव जाति जिंदा ही नहीं रह पाएगी।
0: अगर इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना भी मारे तब भी उसका विनाश निश्चित है।
17: ऐसी कई कुदरती घटनाएं मुमकिन हैं जिनके कारण ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जबरदस्त ज्वालामुखी फूटने से ऐसा संभव है कि सूरज की रोशनी धरती के वातावरण में घुस ही ना पाए, जिससे पूरी धरती का तापमान बेहद कम हो जाए और हम आइस एज में पहुंच जाए। हमारी धरती पर एस्टेरॉयड या कॉमेट से टकराव होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर ऐसा हुआ तो जीवों की ज्यादातर प्रजातियां मिट जाएंगी, और अगर इस एस्टेरॉयड या कॉमेट की चौड़ाई 16 किलोमीटर या उससे ज्यादा हुई तो धरती पर तबाही का बहुत जबरदस्त सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारी धूल हमारे वायुमंडल में चारों ओर फैल जाएगी और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी, जिससे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। पहले शाकाहारी जीव दम तोड़ देंगे, फिर मांसाहारी जीव खत्म होंगे और बाद में ज्यादातर जीवन भी।
0: इसके अलावा इस टकराव से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर वापस धरती पर एसिड रेन के रूप में बरसेगी। इस एसिड रेन से खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर रहने वाली सामग्री जैसे फसल और कुछ समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे, और आखिर में धरती से लगभग 75% जीवों की आबादी खत्म हो जाएगी। धूल और राख के बादल बनेंगे और कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, पर उनके असर से मौसम के पैटर्न कई दशकों के लिए बिगड़ जाएंगे। जुलाई 1994 में एक विशाल कॉमेट का टकराव जुपिटर से हुआ। जुपिटर से टकराने वाला यह कॉमेट करीब 5 किलोमीटर लंबा था। इसे नाम दिया गया शूमेकर लेवी 9। इस जबरदस्त टकराव के असर को 21 अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया, पर इनमें सबसे बड़ा अजूबा था एक डार्क होल जो करीब 12,000 किलोमीटर गहरा था, लगभग धरती की चौड़ाई जितना। इस टकराव से करीब 60 लाख मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा पैदा हुई, जो कि धरती के तमाम परमाणु बमों से पैदा होने वाली ऊर्जा से 600 गुणा ज्यादा है। शूमेकर लेवी 9 के असर को जुपिटर जैसा विशाल ग्रह बर्दाश्त कर सकता था, पर अगर इतना बड़ा कॉमेट हमारे ग्रह से टकराता तो धरती पर अधिकतर जीवन तबाह हो जाता।
18: किसी बड़े एस्ट्रॉइड या कॉमेट के धरती से फिर से टकराने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा टकराव फिर जरूर होगा, सवाल तो ये है कि ये कब होगा और हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं।
17: खुशकिस्मती से अगर एस्ट्रोनॉमर आसमान की जांच

0: थे तो धरती से टकराने वाले इन ज्यादातर एस्टेरॉयड या कॉमेट का पता लगाया जा सकता है। और फिर इसके बाद अप्लाइड फिजिसिस्ट्स और इंजीनियर इन घातक चट्टानों को उनके रास्ते से समय रहते हटा सकते हैं और मानव जाति को बचा सकते हैं। इस तबाही से बचने का रास्ता है वक्त से पहले उनका पता लगाना। अगर हमें दशकों पहले इस खतरे की चेतावनी मिल जाए तो हम उसके खिलाफ एक ठोस योजना सकते हैं, ताकि हम उस घातक चट्टान के रास्ते को हल्का सा बदल सकें, जिससे वो हम तक पहुंचने में कामयाब ना हो पाए। अगर सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों या सिर्फ साल भर पहले चेतावनी मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चेतावनी हमें दशकों पहले मिलनी चाहिए।
1: लेकिन धरती पर सिर्फ एस्टेरॉयड का खतरा नहीं मंडरा रहा, कुछ और भी खतरे हैं जो धरती से जीवन का नामो निशान मिटा सकते हैं। उनमें से खतरा सबसे हो सकता है।
2: ये मानना मुश्किल है, पर असल में अंतरिक्ष में भी मौसम होते हैं। इसे हम स्पेस वेदर कहते हैं। ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ धरती के मौसम की हदें खत्म होती हैं। ज्यादातर जिस स्पेस वेदर की हम चिंता करते हैं वो सूरज से आने वाले सौर तूफान और सोलार फ्लेयर्स हैं।
1: हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, पर बड़ा सौर तूफान इस कवच को भेदने की ताकत रखता है।
0: अगर ऐसा कोई तूफान धरती की ओर रुख करता है तो उससे धरती पर बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी, यानी कि उसके आने से चारों तरफ बिजली का प्रवाह होगा, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और हमारे पावर ग्रिड खाक हो जाएंगे।
1: बिना बिजली के मानव सभ्यता का बुनियादी ढांचा चरमरा जाएगा और चारों ओर महामारी, अकाल और सामाजिक अराजकता फैल जाएगी।
0: इससे मानव जाति का सफाया तो नहीं होगा, पर इससे दुनिया में भारी तबाही जरूर मचेगी।
1: पर खतरे सूरज तक सीमित नहीं है, उसके परे भी है। कुदरत के कहर का एक ऐसा रूप है सुपरनोवा। ये किसी तारे के भयंकर विस्फोट से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा है।
0: पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना के पीछे क्या कोई सुपरनोवा था? और जवाब यह है कि ऐसा होने के 50-50 चांसेस हैं। अगर 10 से 20 लाइट ईयर के फासले पर कोई तारा फटता है तो उसकी वजह से धरती पर बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि ऐसे विस्फोट से ओजोन लेयर खराब हो जाएगी और सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से धरती पर मौत का तांडव मच जाएगा। तो 10 लाइट ईयर के फासले पर तारे का फटना यानी बुरी खबर।
1: पिछले कुछ सालों में कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि धरती को इससे भी बड़ा खतरा है, गामा रे बर्स्ट से।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
1: गामा रे बर्स्ट यानी तेज ऊर्जा वाले पार्टिकल्स के बेहद जबरदस्त एमिशन, जो तब होते हैं जब कोई विशाल तारा फटकर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा के सबसे जबरदस्त विस्फोट हैं। ये किसी विशाल सुपरनोवा से हजारों गुना बड़े होते हैं।
0: गामा रे बर्स्ट किसी भी तारे का बहुत ही जबरदस्त विस्फोट है। इससे पैदा होने वाली ऊर्जा विपरीत दिशा में जाने वाले दो तंग बीमों ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाती है। तो अगर धरती इनमें से किसी भी बीम के रास्ते में आ जाती है तो बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो सकता है। चाहिए गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट ईयर दूर ही क्यों न हो, इस ऐसे गामा रे बर्स्ट किसी आम तारे के

0: छिपने से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस तारे को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 से 20 लाइट ईयर के फासले पर होना चाहिए, जबकि गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट ईयर दूर होने के बावजूद कहर ढा सकता है। अगर धरती गामा रे बर्स्ट के किसी बीम के रास्ते में आ जाती है तो उसमें मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स यानी गामा रेज हमारे वायुमंडल के ओजोन लेयर को मिटा देंगे, जिससे सूरज से आने वाला रेडिएशन हमारे वायुमंडल में दाखिल हो जाएगा और धरती पर जीवन तबाह कर देगा।
1: गामा रे बर्स्ट का धरती के जीवन पर आखिर क्या असर होगा? इसकी मिसाल हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास में मिल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में विशाल पैमाने पर लुप्त होने की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना के पीछे गामा रे बर्स्ट थी।
0: इस घटना की वजह से वो गामा रे बर्स्ट हो सकता है जो धरती से करीब 6000 लाइट ईयर के फासले पर हुआ था। 44 करोड़ साल पहले होने वाली इस घटना को ऑर्डोविशन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन कहते हैं।
1: उस समय धरती पर जीवन समुद्र और महासागरों तक सीमित था। तब मॉलस्क, शेलफिश, कोरल और ट्राइलोबाइट जैसे जीवों का बोलबाला था। सिर्फ 10 सेकंड तक चलने वाली गामा रे बर्स्ट से धरती की 50वीं सदी ओजोन लेयर तबाह हो गई, जिसके कारण सतह पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और जीव जानलेवा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के शिकार हुए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस घटना की वजह से जीवन की सभी प्रजातियों में से 60वीं सदी से ज्यादा का नामो निशान मिट गया होगा। अगर आज के दौर में ऐसी घटना होती है तो दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। जो भी गामा रेज के सीधे संपर्क में आएगा उसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धरती की ओजोन लेयर के तबाह होने से दुनिया की फूड चेन, उसकी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और आखिरकार गामा रे बर्स्ट के कारण वातावरण में ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे दुनिया भर में परमाणु सर्दी छा जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और भुखमरी फैल जाएगी।
0: अच्छी बात यह है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट सिर्फ उसको ही तबाह कर सकता है जो उसके तंग बीम्स के रास्ते में आता है, और अगर धरती उस बीम की किसी भी दिशा में नहीं आती तो हमें कुछ नहीं होगा। धरती का किसी ऐसी बीम की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लगता नहीं कि मानव जाति गामा रे बर्स्ट के कारण धरती से लुप्त होगी। हमारे पास फिक्र करने के लिए उससे भी बड़े खतरे हैं।
1: अगर मानव जाति लुप्त भी हो जाती है तब भी धरती पर जीवन चलता रहेगा।
2: अगर बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना होती भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि धरती हो जाएगी। उस घटना से पहले जिस जीव का वर्चस्व था सिर्फ वो बदल जाएगा, पर धरती का जीवन चलता रहेगा।
3: धरती पर इंसान सिर्फ 2 लाख साल से हैं, जबकि धरती पर जीवन लगभग 3.5 अरब साल से है। बेशक आज धरती पर इंसान का ही राज है, पर धरती के ज्यादातर इतिहास में ऐसा नहीं था। जीवन को धरती से पूरी तरह से मिटाना बेहद मुश्किल है। जीवन बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेता है, इसीलिए धरती पर जीवन चलता रहेगा। इंसान और जानी पहचानी प्रजातियों के मिटने के बाद भी जीवन चलता रहेगा।
1: पर क्या कुछ ऐसा होता है जो ग्रहों को निकल जाता है, अंधेरे में इंतजार में बैठा है? क्या कुछ ऐसा जो धरती का नामो निशान मिटा सकता है? हालांकि वो बहुत विचित्र हैं, उनमें साइंस फिक्शन फिल्म वाली कुछ बात है, पर ब्लैक होल्स एक हकीकत है। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े ब्लैक होल किसी ग्रह को भी निकल सकते हैं।
4: ब्लैक होल एक ऐसी बनावट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त होता है कि प्रकाश भी उसके खिंचाव से नहीं बच सकता।
1: ब्लैक होल का केंद्र इतना छोटा और इतना घना होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई ग्रह हो या फिर कोई और चीज, जो भी उसके पास जाता है ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है और वो उसमें गायब हो जाता है। अगर कहीं से कोई ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर जाए तो ग्रेविटी के उसके जबरदस्ती पर तबाही मच जाएगी, भयानक भूकंप आने लगेंगे और बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटने लगेंगे। जब कोई ग्रह किसी ब्लैक होल में दाखिल होता है तो वो ग्रह नूडल्स की तरह लंबाई में खिंचने लगता है, फिर उसके बेहद लंबे और पतले रेशे बन जाते हैं जो अंत में बेहद छोटे पॉइंट में सिकुड़ जाते हैं।
0: तो अगर हमारी धरती या सूरज को कोई ब्लैक होल निगल लेता है तो वो सच में बहुत बुरी खबर होगी। पर ब्लैक होल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, तो इसलिए हमारे सौर मंडल में किसी ब्लैक होल के आने की संभावना बहुत कम है।
1: एक और खतरा है जो धरती को तबाह कर सकता है। वैज्ञानिकों ने उसे अजीब नाम दिया है, रोग प्लैनेट। अंतरिक्ष में भटकते इन ग्रहों की खोज 90 के दशक में हुई, जब एस्ट्रोनॉमर्स को उनके होने के पुख्ता सबूत मिलने शुरू हुए।
0: रोग प्लैनेट वो खास तरह का ग्रह है जो किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम से इजेक्ट होकर आया है, शायद ऐसे किसी प्लैनेटरी सिस्टम से जो अभी बन रहा है। वहाँ के ग्रहों के ऑर्बिट ठीक से तय भी नहीं हुए, इस वजह से ग्रह टकरा जाते हैं और ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट इफेक्ट की वजह से वो बाहर धकेल दिए जाते हैं।
1: रोग प्लैनेट यतीमों की तरह अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं, वो किसी तारे से नहीं बंधे हैं।
2: ऐसा माना जाता है कि कुछ और तारे हैं जिनके इर्द गिर्द ग्रह चक्कर काट रहे हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो किसी तारे से नहीं बंधे हैं। शायद वो अपनी ऑर्बिट से छूट निकले थे और अब वो बिना किसी रोक टोक के अंतरिक्ष में अकेले घूम रहे हैं।
0: हमें लगता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में चारों ओर अरबों रोग प्लैनेट्स घूम रहे हैं।
1: कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनमें से एक रोग प्लैनेट हमारे सौर मंडल में घूमता हुआ पहुंच सकता है और उसका पृथ्वी से टकराव संभव है, और अगर ऐसा होता है तो उससे हमारी धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
0: अगर कोई रोग प्लैनेट यहाँ आज है तो वो ग्रहों को ऑर्बिट से भटका सकता है, वो पृथ्वी को सूरज में ढकेल सकता है, या फिर वो उसे सौर मंडल से भी बाहर कर सकता है।
4: मिल्की वे गैलेक्सी में अंतरिक्ष लगभग खाली है। सूरज जो धरती के आकार से 100 गुना बड़ा है, अगर उसे इस फुल स्टॉप जितना छोटा समझा जाए तो फिर सबसे करीब का तारा लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा और किसी रोग प्लैनेट की दूरी उससे भी कहीं ज्यादा होगी। किसी रोग प्लैनेट का हमारे सौर मंडल में से गुजरना नामुमकिन नहीं है, पर ऐसा होना भावना बहुत कम है।
1: पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स को रोग स्टार्स के होने के सबूत मिले हैं। ये तारे अंतरिक्ष में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गैलेक्सी की ग्रेविटी का उन पर कोई असर नहीं होता। अगर हमारा टकराव किसी रोग स्टार से होता है तो उससे हमारा पूरा सौर मंडल तबाह हो सकता है। खुशकिस्मती जो तेज रफ्तार वाले रोग स्टार अब तक खोजे गए हैं उनमें से सबसे करीब धरती से 42,000 लाइट ईयर्स दूर है, पर धरती का सामना एस्ट्रिड, गैमा रे बर्स्ट, रोग प्लैनेट या रोग स्टार से टल भी गया तब भी ये तो तय है कि एक दिन ये धरती खत्म जरूर होगी।
0: मान लेते हैं कि हम एस्टेरॉइड्स के टकराव को रोक सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को टाल सकते हैं, पर इतना जान लीजिए कि एक बात है जिसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी, वो ये कि 1 या 2 अरब साल के अंदर धरती के महासागर इवेपोरेट होकर सूख जाए, क्योंकि सूरज धीरे धीरे तेज हो जाएगा, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, इससे पृथ्वी भी गर्म हो जाएगी और पृथ्वी की सतह पर पानी नहीं रहेगा, तो हमारा जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
1: सुदूर भविष्य में सूरज का भी अंत होगा, हमारा सौर मंडल और धरती खत्म हो जाएंगे। उन आखिरी लम्हों का वो अद्भुत नजारा कैसा होगा? धरती मौत को गले कैसे लगाएगी, धमाके के साथ या फिर खामोशी से?
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
1: पृथ्वी इसलिए इतनी अनोखी है क्योंकि इस ग्रह में जीवन पनप सकता है। कई मायनों में हमारा पूरा ग्रह एक जीवित चीज की तरह है, पर जिस चीज में जीवन है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। पृथ्वी उन विनाशकारी घटनाओं से बच सकती है जो चारों ओर तबाही मचाने की ताकत रखती हैं, पर अंत में उसे सूरज और तमाम सौर मंडल के साथ साथ मिट जाना होगा। सूरज को अस्तित्व में आए करीब 4.5 अरब साल हो चुके हैं। वो अपने परमाणु ईंधन का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है।
8: ये कह सकते हैं कि सूरज एक अधेड़ उम्र वाला तारा है जो अपने सामान्य स्थिर जीवन की आधी उम्र जी चुका है। लगभग 5 अरब साल के अंदर सूरज एक लाल रेड जायंट का रूप ले लेगा। उसका तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी चमक बढ़ेगी, आकार भी बढ़ेगा और ऐसा होने के बाद वो सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद वीनस और शायद उसके बाद धरती को भी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आखिर में धरती घूमते घूमते उबलते हुए सूरज से जा टकराएगी और उसमें समाकर खाक हो जाएगी।
3: अगर 1 फुट 16 लाख किलोमीटर जितना हो तो पृथ्वी इस बैरिंग बॉल जितनी होगी और सूरज इस फुटबॉल जितना, और फिर सूरज धरती से 93 फुट दूर होगा जितना वो सन डायल है। जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो एक रेड जायंट का रूप लेकर फैलना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसकी सतह धरती के ऑर्बिट तक पहुँच जाएगी। यानी कि करीब 93 फुट दूर जब सूरज उस रेड जायंट का रूप ले लेगा तब वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हो सकता है कि वो धरती को ही निकल जाए और फिर धरती का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा।
8: आज से लगभग 5 से 7 अरब सालों में सूरज बहुत ज्यादा बदल जाएगा, तब धरती के सतह पर जीवन होने की कोई संभावना नहीं बचे। अगर हम मान भी लें कि सूरज धरती को नहीं निगलता तो ये तो निश्चित है कि धरती का तापमान बर्दाश्त से बाहर होगा, क्योंकि उस समय का सूरज आज के सूरज से लगभग 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। इससे पहले कि सूरज एक रेड जायंट बने, उम्मीद है कि मानव जाति किसी दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम तक पहुंचने की तैयारी कर लेगी। वो किसी रहने लायक ग्रह में जाकर बस जाएगी, कोई ऐसी जगह जिसे नया घर कहा जा सके।
1: इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि धरती के मिटने का सिलसिला कैसा होगा। हो सकता है सूरज धरती को ना निकले, शायद धरती ही उस विशाल रेड जायंट से बहुत दूर चली जाए।
8: जब सूरज का आखिरी समय आएगा तो वो रेड जायंट बन जाएगा, तब उसका मास लगातार घट रहा होगा, वो अपने विशालकाय रूप को धीरे धीरे खो रहा होगा। उस वजह से धरती धीरे धीरे सूरज से दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो जाएगा। एक और संभावना है कि कुछ ऐसे असर पैदा हों जिनसे धरती सूरज की तरफ जाने लगे, वो भी तेजी से घूमते हुए। मिसाल के तौर पर अगर वो सूरज के वायुमंडल में दाखिल हो जाती है तो फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से वो गोल गोल घूमती हुई उसमें समा जाएगी, पर कौन सा असर हावी होगा ये कहना मुश्किल है। शायद धरती सूरज से दूर चली जाए, या ये हो सकता है कि सूरज धरती को निगल ले। पर जो भी होगा ये निश्चित है कि धरती के साथ आखिर में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा।
1: जैसे जैसे सूरज का ईंधन खत्म होने लगता है उसका कोर लगातार ठंडा होकर सिकुड़ने लगता है, तब उसका डायमीटर कुछ 1000 किलोमीटर का ही रह जाता है। अब वो व्हाइट ड्वार्फ बन गया है।
8: व्हाइट ड्वार्फ बन जाने के बाद सूरज का आकार बहुत ही छोटा होगा, लगभग पृथ्वी जितना, पर तुलना में उसका मास बहुत ही ज्यादा होगा, धरती से लगभग 2,00,000 गुना ज्यादा। मतलब व्हाइट ड्वार्फ बहुत ज्यादा घना होगा, उसके जरा से टुकड़े का वजन कई टन होगा।
3: सिर्फ सूरज का गर्म कोर ही बाकी बचेगा और पृथ्वी का ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। बुरी तरह से जलने के बाद अब पृथ्वी बस पत्थर का एक टुकड़ा ही होगी।
1: और इस तरह आखिर में धरती उन सभी भाग्यशाली घटनाओं का इस्तेमाल कर चुकी होगी। हालांकि धरती का भविष्य अंधकार में लग रहा हो, पर ऐसा होने में अभी बहुत बहुत देर है।
4: धरती का अस्तित्व अरबों सालों से बना हुआ है और उसका भविष्य आने वाले अरबों सालों तक बना रहेगा। हमें धरती पर आए 5,00,000 साल भी नहीं हुए। इस ग्रह के लंबे इतिहास में हमारी मौजूदगी बस पलक झपकने जितनी देर की है। तो ये ध्यान रखते हुए ही हमें सोचना चाहिए कि धरती के लिए हमारा फर्ज क्या है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
5: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
0: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894-18744।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R

0: स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: तो फिर आंखें बंद करो।
9: क्यों?
8: तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखता रहा तो आज बस।
9: तो आज क्या?
8: जो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन आज मैं उस एहसास का एहसास दिलाना चाहता हूँ तुम्हें। महसूस करोगी? तो फिर आंखें बंद करो। हवा का पहला झोंका तुम्हारे दामन को छूना चाहता है,
9: तो छूने दो ना।
8: आसमान ने अपनी बाहें फैलाई हैं, वो तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है।
9: लेने दो ना।
8: बरसात होने वाली है,
9: होने दो ना।
8: आसमान से पहली बूंद तुम्हारी तरफ आ रही है,
9: होने दो ना।
8: वो तुम्हें भिगोना चाहती है,
9: भिगोने दो ना।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
9: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। और साथियों, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो रिमझिम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं और यहां एसी भी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा है। दोस्तों, सुबह जब मैं घर से निकला तो लगा कि आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत ख़राब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पे खड़ा है। क्या साथियों, आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। श्रोताओं, मुझे याद है पहले गर्म सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
10: अरे आरजे बाबू, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
9: ठीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये सब मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर

0: होती तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
1: ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है। ओह, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
0: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
1: अच्छा भाभी, अब मुझे ये बताइए कि ये लू क्या होता है? हमने अक्सर सुना है लोग कहते हैं कि लू लग गई, उसको लू लग गई, इसको लू लग गई, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर होता क्या है?
0: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
1: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है, बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
0: देखिए आरजे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: अच्छा दीदी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की तो बात की, लेकिन कई बार हमने सुना है कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और इसको कब लेना चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये कि ये सिर्फ बीमारी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
0: बिल्कुल आरजे, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता।

0: सकता है।
1: हाँ, ये तो सही बात है। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन दीदी क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
0: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं, और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता, हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: ये तो ठीक है, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की भी कमी नहीं होने देते।
1: अच्छा भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, रिक्शा चलाने वाले लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा, उनका क्या?
0: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वो अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
0: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और भी अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: अच्छा भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं?
0: अरे आरजे, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना वो भी झेलते हैं जितना हम।
0: बिल्कुल आजी, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वो किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत जरूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा, हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर हो, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। साथियों, याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार। और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने कोई ऐसा मसला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ आरजी, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
0: हाँ आरजे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
1: साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसलिए आज से ही ये तय कर लीजिए, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं, तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और साथियों, अब वो समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो हम फिर मिलेंगे आप सभी से इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहता है सुनो दिल से।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया साइड पेटी का पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत, ये ये ये ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
4: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
2: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन मटन दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा बर्गर चाट गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
4: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
2: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड गोपालगंज,
4: जहां हर निवाला कहे वाह।
5: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: टॉप टॉप एवं कुर्ती
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है, केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 06 575।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तू जो
4: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 620313956।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: धक जिया करे जाने क्या पिया करे ओ धक धक जिया करे जाने क्या पिया करे।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: All right. This is me.

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15
1: मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: तो ये नंबर आखें इकरा नीचे मत करें।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87-894-18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अरे की कहो
6: रउआ, तो बोली मत हमरा से। तो
5: अरे त मुंह कालत कहले बाड़ू
6: रउआ, बात मत करी हमरा से, कोनो मतलब हमरा से रउआ, तो अपने धुन में रहे के बा।
5: अरे बतिया का भल में बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे, बताओ का बोलबा।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: कहाँ बाल?
1: घरे बनी।
0: अरे जल्दी आओ ना।
1: अरे इतना जल्दी कब आ?
0: हमरा इसे कुछ नहीं के सुने के, जल्दी आओ ना।
1: अरे तत इतना घबराई का है बड़े?
0: हमरा जिंदगी और मौत के सवाल बा, प्लीज जल्दी आ जाना।

0: देखे परी चल।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं लोग को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18 744।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92 899 22567 या 97 714 86 164।
13: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
14: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
15: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
14: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
15: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
14: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
15: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
16: उत्तर बिहार का गौरव,
17: सारण प्रमंडल की शान,
16: गोपालगंज की धड़कन
17: और अपने भाषा की पहचान,
16: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
17: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो, नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
6: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, प्रयागराज से मैम।
5: जी, कैसे हैं मनोज जी?
6: ठीक है मैम
5: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है मनोज जी?
6: मैंने अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है
5: जी। और से बताइए, घर परिवार आपका कैसा है?
6: परिवार तो सही है, जो है पापा है, पापा का दुकान रखे हैं और बाकी घर परिवार तो अभी सही है। आगे हम जो है कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं बीएड के लिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब बीएड के लिए सोच रहे हैं।
5: बिल्कुल बढ़िया है, करिए। और अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
6: पापा का नाम है अनिल सिंह एंड मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
5: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
6: यस मैम
5: जी।

0: तो मनोज जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,
1: यस मैम,
0: भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कॉफी का, बी तिलहन का और सी गेहूं का। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम गेहूं।
0: प्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गेहूं को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तिलहन। सही उत्तर होगा तिलहन। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रवि कुमार बोल रहा हूँ। ये कमा
0: जी, कैसे हैं रवि जी?
2: ठीक हूँ मैम
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: बैठे थे।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है रवि जी आपसे? आपकी
2: 12वीं पास है।
0: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद हो गया है?
2: जारी है मैम, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन।
0: अभी लिए नहीं है?
2: नहीं।
0: ओके, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: जी
0: जी, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: मम्मी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम दिनेश।
0: जी, तो ले पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी,

0: विजय, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय श्रोता है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: कौन सा ऑप्शन?
1: ऑप्शन सी तेलुगु।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी 1991। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चोर
0: है?
1: जी।
0: लॉक कर दो।
1: जी जी
0: जी। तो चलिए रवि जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1971 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो तीसरा प्रश्न आपसे ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, बी 86वां और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी।
0: श्योर हैं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 76 संशोधन को लॉक करते हैं। और बताएं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: अच्छा, आपका चौथा प्रश्न ये है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए।
0: ऑप्शन ए।
1: हाँ, 32।
0: चोर है?

0: ऑप्शन बी 1879 और ऑप्शन सी 1785। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिए मैम।
0: ऑप्शन ए 1821, बी 1879 और सी 1785।
1: 1879 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, लॉक के साथ।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1879 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875 और सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब। चोर है
1: जी,
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 38वां संशोधन, बी 42वां संशोधन और सी 44वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 42वां संशोधन।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 42वां संशोधन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 44वां संशोधन।
1: ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेल्प रिच फाउंडेशन कॉल से।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921, 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो हेलो।

0: हेलो, स्वागत है आपका रेडियो रिंझिन के कार्यक्रम हेलो प्यूज कॉन्टेस्ट में।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: नाम अनुराधा गुप्ता है, हम थाने से बोल रहे हैं।
0: नाम एक बार और बताइए।
1: अनुराधा गुप्ता।
0: अनुराधा गुप्ता
1: जी।
0: जी कैसे हैं अनुराधा जी?
1: हम ठीक हैं, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं, खाना बना रहे थे दोपहर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: जी मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में अब गई हूँ।
0: तो आपका एम क्या है, कुछ सोचा है आपने?
1: टीचर का है, बट देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी?
1: जी
0: जी। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: जी, पापा का नाम रघुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।

0: तो राजा जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिनलैंड, ऑप्शन सी
0: फिनलैंड।
1: जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है
0: तो लॉक करो।
1: जी
0: जी तो चलिए अनुराधा जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी फिनलैंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: अच्छा आपका दूसरा प्रश्न ये है
1: जी।
0: भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921 और सी 1931। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1921।
0: जी श्योर है?
1: देखिए क्या श्योर नहीं है।
0: ओके चलिए तो दादा जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1921 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत है। सही उत्तर होगा 1911।
1: ठीक है।
0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलाम जी?
2: बढ़िया है, अपना सुनाइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुलाम जी आपकी?
2: क्या मैम?
0: पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप?
2: मैट्रिक तक किए हैं मैम।
0: मैट्रिक तक किए हैं?
2: जी जी।
0: तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए आप।
2: मेरे अबू का नाम है अब्दुल वाहिद अंसारी, मम्मी का नाम है।
0: आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी
0: जी

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम बी होगा,
0: श्रीगुप्त।
1: जी
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है लेकिन लगता है।
0: ओके तो लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा और ऑप्शन सी विज्ञान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विज्ञान होगा मैम।
0: विज्ञान होगा
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है लेकिन देखते हैं कोशिश से।
0: ठीक है तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जल संरक्षण। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन मटन दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा बर्गर चाट गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 29 94 921, 80 29 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: हेलो।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से? जी कैसे हैं जहाल जी? तो पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
11: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं क्लास में।
0: किस क्लास में है?
11: 10 क्लास में, 10th में।
0: अभी 10th में पढ़ते हैं?
11: यस मैम।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है?
11: अच्छी चल रही है मैम।
0: जी, तो कुछ सोचा है आगे क्या करना है पढ़ाई कंप्लीट करके?
11: नहीं मैम, अभी नहीं सोचे हैं।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
11: अम्मी का नाम कैसा खाते हैं और अबू का नाम मेरा जन। सॉरी
0: जी, लिया गया आपसे आज का पहला प्रश्न।
11: यस मैम।
0: ओके

0: निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी जुजुबा मोम और ऑप्शन सी मधुमोम। आपका समय श्रोता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी जुजुबा मोम।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
0: ये तो लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके तो चलिए झार जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी जुजुबा मोम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पैराफिन मोम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी ब्रह्मस्थान को पाल से।
0: ठीक, कैसी है सलोनी जी?
2: ठीक हूँ
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी
0: जी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: बीए।
0: बीए चल रहा है? कौन सा ईयर?
2: फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है?
2: हाँ।
0: तो कैसे चल रही है तैयारी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: ओके।

0: नाम बता दीजिए मम्मी पापा का अपना।
1: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल का।
0: ओके, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है सलोनी जी, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु।
1: तमिल।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
12: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
9: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
9: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी, मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी, कैसी हैं बिमल जी?
13: मैं ठीक हूँ मैम। अभी फोन दो चार बार की, रिंग हो गया, कट कट गया।
0: जी, मैं कॉल रिसीव कर रही थी और कॉल कट जा रही थी।
13: अच्छा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है।
0: जी जी, हो सकता है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है जी बिमल जी आपकी?
13: ग्रेजुएशन है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
13: अभी तो छूट गया मैम।
0: अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
13: मम्मी का नाम प्रभावती देवी है, पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: जी, तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
13: जी मैम।
0: तो चलिए, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है बिमल,

0: टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लगी वेयर्ड, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय स्रोत है अब।
1: ऑप्शन ए जॉन लोगी।
0: जॉन लोगी वेयर्ड
1: जी। वेयर्ड
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, देखते हैं।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जॉन लोगी वेयर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय स्रोत है अब।
1: दिल्ली। दिल्ली
0: प्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ब्राजीलिया।
1: ब्राजीलिया।
0: हाँ। ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना।
2: राजन कुमार बोल रहा हूँ थामे से।
0: राजन
2: जी।
0: जी क्या हाल चाल है राजन जी?
2: ठीक है
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
2: अभी हम ग्रेजुएशन पास करके बीएड कर रहे हैं।
0: जी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आया है।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी पूछिए।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मेरे मम्मी पापा का नाम है श्री रामा जी प्रसाद, मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी। तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए माइकल फराडे, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू होता है।
1: ऑप्शन बी होगा, थॉमस एडिसन।
0: सही श्योर है आप?
1: जी
0: लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए राजन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? ऑप्शन ए मंगलयान 2, ऑप्शन बी नेपच्यून मिशन और ऑप्शन सी शुक्रयान 1। आपका समय शुरू है। आप
1: मंगलयान को लॉक करिए।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 50-50 है।
0: अच्छा तो लॉक करूं?
1: जी मैम लॉक।
0: चलिए तो राजन जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मंगलयान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा शुक्रयान 1। ओके हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835-56965।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
8: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: मैं सोनू दुबे पार्टी से बात कर रहा हूँ।
0: ठीक, कैसे हैं सोनू जी?
8: बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
8: रखता हूँ।
0: चलिए जी, आपसे आज का पहला प्रश्न।
8: जी जी
0: जी,

0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सोनू जी।
1: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिता जी का नाम सोनू।
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु को फिक्स करें।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं हूँ, कंफ्यूज है तमिल और तेलुगु में
0: जी।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? ऑप्शन ए तेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक और ऑप्शन सी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए ठीक है जी।
0: ऑप्शन ए
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए तेथिस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 86वां संशोधन और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छियासीवा
0: है
1: जी, मौलिक शिक्षा का नाम है
0: जी। हाँ। शिक्षा का अधिकार मौलिक।
1: हाँ, 86वां
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 86वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न आपसे ये है, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 226 और सी है अनुच्छेद 368।
1: 368 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल में।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत हुई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393 65 930।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444।

0: 7870331444।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइल के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं ल्यूकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
6: और 90-97-61-60-02।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम में जून 2015 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम से अंजाम दिए गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के हिस्सों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। सुरक्षा कारणों से स्पेशल फोर्सेज के कर्मियों की पहचान गुप्त रखी गई है।

4 जून 2015 सुबह 7:25 भारतीय सेना का एक काफिला मणिपुर के चंदेल जिले से नागालैंड के दीमापुर की ओर बढ़ रहा है।

सफर में कुछ ही किलोमीटर आगे उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया गया। जब तक जिंदा बचे सैनिक जवाबी हमला करते, हमलावर जंगल में गायब हो चुके थे। अठारह भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह हमला पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय में उत्तर पूर्वी भारत में हुए सबसे भयानक उग्रवादी हमलों में से एक है। भारतीय सेना का जवाब होगा एक प्राणघातक हमला।

0: Special Operations India, Myanmar.
1: चार जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में हुए इस उग्रवादी हमले के बाद सुरक्षा विभाग तेजी से हरकत में आ गया।
2: इंडियन आर्मी पर हुए अटैक की उस घटना के तुरंत बाद हम सब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गए थे।
1: भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, नाकाबंदी गहरी कर दी गई, हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मोर्चे तैयार कर लिए गए। इसी बीच भारत के गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई।
3: राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका बदला जरूर लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। इसकी दूसरी वजह थी गुस्सा, और ये गुस्सा उन उग्रवादियों के खिलाफ था जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से हमारी सेना पर हमला करने की जरूरत की।
1: खुफिया विभाग ने संकेत दिए कि हमलावर इंडो म्यांमार बॉर्डर की तरफ से आए थे। भारत का उत्तर पूर्वी इलाका म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था।
2: हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि किसी को भी सरहद पार करके विदेशी हथियार लाकर भारतीय सरजमी पर आतंक मचाने का दुस्साहस नहीं करने दिया जा सकता।
1: उत्तर पूर्व में ऐसे कई विद्रोही दल काम कर रहे हैं जो भारतीय संघ के खिलाफ गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं।
3: ये सभी बहुत पुराने मिलिटेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं।
1: भारत म्यांमार सीमा पर कई

0: भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस या फिर पैरा एसएफ। उच्च कोटि का एक लड़ाकू बल जिनका प्रतीक चिन्ह है वाघ नख, जो कि छत्रपति शिवाजी का पसंदीदा हथियार और गौरवशाली मराठा योद्धा परंपरा का प्रतीक रहा है।
1: वाघ मतलब टाइगर और नख यानी उसके पंजों के नाखून।
0: ये जवान जंगल में युद्ध करने में माहिर होते हैं। ये जवान जंगल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जंग लड़ सकते हैं। इस इलाके में कोई भी मिशन पहले प्रकृति के खिलाफ जंग होता है। इन जवानों को दुनिया का सबसे ऊंचे दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाता है। पैरा एसएफ चकमा देने और अचानक हमला बोलने में माहिर होते हैं। ये एक गुरिल्ला की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जे. शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जे. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
8: स्पेशल ऑपरेशंस इंडिया म्यांमार।
9: चार जून 2015 दोपहर 12 बजे पैरा SF के गुप्तचर हरकत में आ जाते हैं ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके और उनके छिपने की जगह को भी ढूंढा जाए।

0: तारीख की सुबह हमें पता चला कि ये किस गुट का काम है और उन्होंने इसका दावा भी किया था।
1: हालांकि ये हमला एक ऐसे गिरोह द्वारा किया गया था जिसका ताल्लुक कई उग्रवादी संगठनों से था, लेकिन हमले की योजना और संचालन करने वाले संगठन का नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग या NSCNK।
0: ये नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश उग्रवादी संगठनों की एक मद ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग ही उन्हें पनाह देते हैं

0: लिए कैंप्स का बंदोबस्त करते हैं और बदले में पैसे लेकर हथियार देते हैं।
1: एनएससी एंड खापलांग एक बेरहम और सुनियोजित संगठन है।
0: ये लोग बड़े गर्व से अपना यूनिफॉर्म पहन के आर्मी की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका हमला बेहद घातक होता है और ये आईईडी में एक्सपर्ट होते हैं।
1: इनका गुप्त हथियार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईईडी, जो घरेलू चीजों से बनाया गया एक जानलेवा देसी बम है। आईईडी को बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। इन बॉम्ब्स का पता लगाना भी लगभग असंभव है।
0: सब लक पर डिपेंड करता है। अगर ये आपको दिख गया तो ठीक है, वरना ये एक सूखी घास के ढेर से एक सुई को तलाशने जैसा है। ये बहुत मुश्किल है। ये लोग आसपास छिपे होते हैं, अचानक हमला करते हैं और भाग जाते हैं। यही इनके काम करने का तरीका है।
1: ये गुरिल्ला आर्मी जंगल में कठोर परिश्रम करती है और मारो और भागो की रणनीति पर अमल करती है।
0: ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा है जो हमेशा बदलता रहता है।
1: यहाँ के नागरिक एनएससीएन खापलांग को पैसा देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं।
2: उनके पास अच्छे खासे संसाधन है, जहाँ जबरन वसूली एक बहुत बड़ा बिजनेस है, साथ ही फिरौती, अपहरण और ड्रग सप्लाई।
1: धमकी, जबरदस्ती और हिंसा जबरन वसूली के जरिए है।
0: 3 महीनों में उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन तो की होगी।
3: मिलिटेंट्स को रोकने की जरूरत है और इसके लिए भारत को उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।
1: शाम ढलने तक स्पेशल फोर्सेस ने उग्रवादियों के ठिकानों की पुष्टि की सूचना दे दी। ये कैंप मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में है। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला यह शिविर एनएससीएन खापलांग की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहां तकरीबन 250 हथियारबंद मिलिटेंट्स के होने का अनुमान है।
4: टारगेट बहुत बड़ा था, जबरदस्त पहरेदारी थी, मजबूत घेराबंदी थी।
2: यह तय किया गया कि उन्हें उस जगह मारा जाए जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो, क्योंकि ये कैंप दूसरे सभी कैंप से बहुत बड़ा है और ये उनका गढ़ है जहां से वो अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं।
1: 4 जून 2015 शाम 4:20, लेकिन खुफिया विभाग की अतिरिक्त जानकारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
3: खुफिया विभाग के लोगों ने हमें सूचना दी कि वो खुद को फिर से एकजुट कर रहे हैं और शायद एक नई योजना के तहत दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं।
1: खुफिया सूत्रों से पता चला कि उग्रवादी और हमले करने की तैयारी कर रहे हैं।
3: हमने सोचा इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हम उनका नामोनिशान मिटा देंगे।
1: इम्फाल में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों की मुलाकात होती है। हालात बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। उग्रवादियों को फिर से हमला करने का मौका देने का सवाल ही नहीं उठता। भारत को बहुत जल्द और जोरदार हमला करने की जरूरत है।
4: ये एक हाई रिस्क मिशन था, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत थी।
1: लक्ष्य साफ था, योजना बन चुकी थी। शुरुआत 24 घंटे के अंदर दुश्मन के इलाके में पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय करना। पूरा इलाका घना जंगल था। लक्ष्य था एनएससीएम खापलांग का मिलिटेंट कैंप, जो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दुश्मनों की ताकत करीब 250 हथियारबंद उग्रवादी, जो काफी खतरनाक हैं। मकसद, उग्रवादी शिविर को नष्ट करना। फैसले का दिन 9 जून 2015। अब हमला करने के लिए 90 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
5: डिटेल में चर्चा करने के बाद हमने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया और इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया 9 जून 2015 को।
0: चीफ ने सिर्फ एक बात पूछी, क्या आप लोग ये कर पाएंगे?
1: टीम लीडर की सिर्फ एक ही परेशानी है। इस तरह के फैले हुए लक्ष्य के लिए बड़े दलबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके पास स्टाफ की कमी है।
4: उनकी टीम से कई लोग यूएन मिशन पर जा रहे थे और वो लोग दिल्ली में थे।
1: इन जवानों के बिना दुश्मन को हराना असंभव होगा। आर्मी चीफ ने एक कॉल किया, दिल्ली में रह रहे स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मणिपुर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। हमला करने में 82 घंटे बचे हैं और मदद के लिए एक टुकड़ी पहुंच गई। अब टीम हमला करने के लिए तैयार है। ये एक टॉप सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन है। अब जवानों को अकेला रखा जाएगा। मिशन पूरा होने तक किसी का भी बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। ऑपरेशन हॉट परस्यूट शुरू हो गया।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
10: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
16: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
16: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
16: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
16: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
17: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: स्पेशल ऑपरेशंस इंडिया म्यांमार।
1: मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों ने भारतीय सेना के एक काफिले पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। स्पेशल फोर्सेस की स्ट्राइक टीम के पास 90 घंटे की समय सीमा है। उनका मिशन NSCN खापलांग के कैंप को तलाशना और नेस्त नाबूद कर देना। जवान अपने मिशन में लग चुके हैं। हर जवान अच्छे से जानता है कि जब देश को उनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटना है। ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल मिशन्स में से एक होने जा रहा है।

0: हमला करने में 56 घंटे बचे हैं और अब अपना जौहर दिखाने का वक्त आ गया है।
1: जनरल रावत ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया था।
0: स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बिहार रेजिमेंट के पैदल सैनिकों के भेस में ले जाया जा रहा है। यह हमलावर दस्ता इंफाल से पूर्व की तरफ म्यांमार के साथ लगे इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट तक जा रहा है। ये यात्रा 9 घंटे की है और खतरों से भरी हुई है।
2: ये उग्रवादी मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर ऑपरेट करते हैं। वो इस इलाके में आजादी से घूमते हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना था कि जब तक हम इस कैंप तक ना पहुंचे तब तक हमें किसी की नजर में नहीं आना है और ऐसा ना होने पर ऑपरेशन नाकाम हो जाता।
0: ट्रक्स ने उन्हें एक निश्चित स्थान तक पहुंचा दिया। सारे जवान मणिपुर म्यांमार सीमा से लगी नागा हिल्स के किनारे तक पहुंच गए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ऑपरेशन हॉट पर्स्यूट शुरू हो चुका है। हमला करने में 48 घंटे बचे हैं।
1: 50 किलोमीटर की यह दूरी हमें सिर्फ 24 घंटे में पूरी करनी थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
0: हर जवान ने 35 किलो का जंग लड़ने का सामान उठाया हुआ है जिसमें घातक हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। गोपनीयता बहुत जरूरी है लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस रास्ते को चुना गया वो बेहद गर्मी और उमस से भरा हुआ है।
2: हमने बहुत ही मुश्किल और लंबा रास्ता चुना जो पूरी तरह से घिरे एक घने जंगल के बीच से गुजरता था।
0: कुछ इलाके इतने घने हैं कि उन्हें सूरज की किरणें भी भेद नहीं पाती। इस इलाके में चारों तरफ हर रूप में खतरा मौजूद है। उमस 99% है। ये जंग है सोल्जर वर्सेस वाइल्ड। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तापमान भी बढ़ता गया। हर कदम पर ऊर्जा कम हो रही है।

0: आखिरकार जवानों को कुछ राहत मिली। असॉल्ट से 37 घंटे पहले वो भारत के आखिरी गांव तक पहुंच गए। इसके आगे इंडो म्यांमार बॉर्डर है।
1: यहाँ एक प्रोटोकॉल के तहत नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है और मिलिटेंट्स भी इसी का फायदा उठाते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल किया जा रहा है तैयार। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवसायियों को भरोसा दिया कि सुरक्षा और सुविधा के मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
1: मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो पूरा गैप है इसको बदलने का समय है। बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुले, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित होगा तभी जब बिहार समृद्ध होगा।
0: मुख्यमंत्री ने उद्योग संघों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं समझी और उनके निदान का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण उत्पन्न संकट से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
2: पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे, जो दुनिया के हालात हैं, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, दाम में जो बढ़ोतरी का दर है वो भी समझिए कई देशों की तुलना में यहाँ पे नियंत्रित रखा गया है कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके तहत हम लोग काम करके खपत को कम करें और खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव आ रहा है उसका हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विभिन्न भागों में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को संगठन के विचार, व्यवस्था और संपर्क माध्यमों से परिचित कराया जा रहा है। रोहतास में आयोजित महाअभियान में आज राज्य के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, विकसित राष्ट्र बनाकर भारत को परम वैभव पर पहुंचाना और इस लक्ष्य को पूरा करने में पूरे देश के असंख्य कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य के पीछे हम सभी लोग
0: नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट सिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। श्री मिश्रा शेखपुरा जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला कार्य योजना तैयार कर रहा है।
4: भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी कड़ी में पूरे देश स्तर दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है और न सिर्फ शेखपुरा में बल्कि पूरे देश स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो मंडल स्तर से जिले स्तर तक भी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बेहतरी के लिए उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है।
0: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पटना में पार्टी की आज हुई बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि महागठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त उम्मीदवार दिए जाने पर भी विचार किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों के लिए आज आईआईटी पटना में स्वागत सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
5: आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के युवा शामिल हुए। पंजाब से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और उन्हें बिहार की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से अवगत कराया गया। डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं से देश की विविध संस्कृति को समझने, आपसी संवाद बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद भी किया।
6: मैं आईआईटी खड़गपुर से 1986 में पास आउट किया था, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैं जॉब किया एलएनटी में एक साल, फिर आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया, फिर मैं पब्लिक सेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बॉम्बे ज्वाइन किया, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस दिया, दिल्ली आया, यूपीएससी लिखा 90 में और फिर आपके सामने पुलिस में आ गया।
5: आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि पंजाब से आए छात्रों को राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
7: उन जगहों पे ले जाएंगे जिसके कारण बिहार ज्यादा जाता है, जैसे वैशाली है, बोध गया है, ये है नालंदा है, वैशाली का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा यहाँ के संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के व्यवसाय को समझने के लिए और यहाँ के व्यक्तियों की मानसिकता को समझने का भी पूरा प्रयास रहेगा।
5: कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मेहता समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा संगम कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल को समझने का अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को डोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में लू चलने की संभावना जताई है
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना समेत प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजन किया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 से 4:30 तक चली। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और इससे संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थाओं में आवेदन दे सकते हैं तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई कर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, भारी संख्या में कारतूस, 4.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में एक युवती से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य निषेध कानून और भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले की बरबीघा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी पिस्तौल और 3 संदिग्ध मोबाइल बरामद की गई है। दोनों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरी सराय कबीरपुर पथ पर गश्ती के दौरान एक साइबर ठग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले के बीरपुर में सशस्त्र सीमा बल द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली निकाली गई। वाहिनी मुख्यालय बीरपुर से सीमा चौकी कटैया तक आयोजित रैली का उद्देश्य सीमा क्षेत्र के लोगों और जवानों के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में छात्र, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से की जाएगी लागू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radioremjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके प्रेरणा, सुझाव और बेहतर सहयोग से ही रेडियो रिमझिम लगातार निरंतर बेहतर प्रसारण कर रहा है। आपको पता ही है कि भारत सरकार की टीम जो है 3 महीने तक रेडियो रिमझिम जहां स्थापित है उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक सर्वे कर रहा है कि कितने लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, उनसे मिल रहा है। उन लोगों ने बताया कि हमने बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया, लोगों का काफी सकारात्मक सहयोग रेडियो रिमझिम के प्रति मिल रहा है। यह जानकर हमें भी आनंद की अनुभूति हुई। आप जैसे आदरणीय श्रोताओं के बदौलत ही रेडियो रिमझिम पूरे भारत वर्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। हमें उम्मीद है कि जो श्रोता आपका संदेश मिला कार्यक्रम सुन रहे हैं वे जरूर भारत सरकार के सर्वेयर को, सर्वेकर्ता को सहयोग देंगे और आपके मन में जो भी नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव जो भी बातें हैं उनको बताएंगे। रेडियो रिमझिम सेहत सही लाभ कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। इसके अलावा बीच बीच में सेहत से संबंधित विज्ञापन भी देते रहता है। इसके अलावा गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में स्थापित जो भी चिकित्सक हैं वे भी रेडियो रिमझिम को अपना आवाज, अपना ऑडियो देते हैं जिसका प्रसारण हम करते रहते हैं। और रेडियो रिमझिम में काम करने वाले जो आरजे हैं वे भी समय समय पर एपिसोड बनाते हैं और उसका प्रसारण कभी दोपहर में, कभी सुबह में, कभी शाम में हम करते हैं। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हाल में ही एक कार्यक्रम का प्रसारण हुआ कि जो गर्मी पड़ रही है उससे मानव जाति तो बेहाल ही है, पशु पक्षी जीव जंतु सभी लोग बेहाल हैं। कैसे हम गर्मी से बचे, कैसे पृथ्वी को हम राहत दें, इन सब बातों पर परिचर्चा होता है जिसका प्रसारण हम रेडियो से करते हैं। आपको पता ही है रेडियो रिमझिम को आप 4 तरह से सुन सकते हैं। रेडियो पर सुनिए, अपने मोबाइल पर सुनिए, इंटरनेट पर सुनिए और जो 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी है यदि उसमें भी इंटरनेट की व्यवस्था है तो उस पर भी आप सुन सकते हैं। हम कोई बहुत काबिल योग्य व्यक्ति नहीं है, आप लोगों से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो सामाजिक, पारिवारिक अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं। यह जो गर्मी है इसके पूर्व 50 साल पहले 40 साल पहले देखा जाए तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। आज की गर्मी जो है हाथ पैर जो है जला दे रहा है। 11 बजे 10 बजे के बाद घर से निकलना बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा तकलीफ देह हो रहा है। इससे हम लोग कैसे बचे? लगातार सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ रहा है और पृथ्वी की नमी जो है धीरे धीरे घट रही है। कई तालाब पोखरा जो है सूख गए हैं। तो इस गर्मी में हम लोग तो बेहाल हैं ही, साथ में जो पशु पक्षी हैं वे भी बेहाल है, जो रोगी हैं वे भी बेहाल है। लेकिन हम अपने स्तर से पशु पक्षियों के लिए अपने छत पर, घर के सामने, नाद में, किसी मिट्टी के पात्र में यदि थोड़ा सा जल रख देते हैं तो हमारा जो समिष्टि है, पर्यावरण है, उसमें जीव जंतु को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि संसार में सभी वृक्ष खत्म हो जाएं तो मानव जाति भी खत्म हो जाएगा, पशु पक्षी खत्म हो जाएं तो मनुष्य के लिए कई तरह की महामारी जो है आ जाएगी। इसलिए अपने समष्टि को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें मानवतापूर्ण सेवा पशु पक्षी की भी करनी चाहिए। रेडियो रिमझिम अपना प्रसारण सुबह 5 बजे से शुरू करता है और रात को 11:10 पर हिंदी और अंग्रेजी का समाचार सुनाने के बाद केवल रेडियो पर स्थगित करता है। ऐप पर 24 घंटे हमारा प्रसारण चलता है। रेडियो रिमझिम में काम करने वाले जो ऑपरेटर हैं वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात के समय हम विज्ञापन नहीं दे, केवल गीत संगीत और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण करें। कई लोग जो है नाइट ड्यूटी काम करते हैं विदेशों में, दूसरे शहरों में, वे भी रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। हमारे असंख्य श्रोता ऐसे हैं जो हमें सुनते हैं, मिलने पर बताते हैं, लेकिन आपका संदेश मिला में बहुत कम संख्या में आपका संदेश आता है। वैसे रेडियो रिमझिम के आरजे द्वारा बार बार संकेत दिया जाता है कि आप जो है किसी भी माध्यम से हम तक संदेश दें। हमें लगता है कि हम यदि बहुत अच्छा करते हैं उसकी भी सूचना दें, कोई कार्यक्रम आपको अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में भी बताएं, और कोई नया कार्यक्रम यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। चूंकि हम जो है पूरे जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, लेकिन मानव हैं, हमसे भी चूक हो सकती है, और जब आप लोगों का सुझाव आता है तो हम और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ महनों का पत्र आया था, उन्होंने कहा कि भाई सोठी बिरजाभार को फिर से चालू किया जाए, तो हमने उस कार्यक्रम को चालू किया। कुछ युवा साथी हमारे हैं, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भारत की कहानी एक कार्यक्रम है जो बड़ा ही अच्छा लगता है, थोड़ा उसे भी चालू करें। उसे भी चालू किया गया। कई लोग हंसते हुए कहे कि आत्मा परमात्मा रूह की कहानी भी हमें सुनाइए, हमने उसे भी चालू किया। बड़ा ही आनंद मिलता है जब आप लोग आदेश देते हैं और हम उसका अनुपालन करते हैं। गोपालगंज हालचाल प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे इसका प्रसारण हम नियमित रूप से करते हैं। और बहुत सारे श्रोता हैं जो रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए रेडियो रिमझिम के नाम से यूट्यूब है जिस पर हाल चाल गोपालगंज लिखा हुआ है और ऑडियो के माध्यम से वे हमें सुनते हैं। रेडियो रिमझिम हमेशा प्रयास करता है कि नवाचारी कार्यक्रमों का हम प्रसारण करें और बेहतर करें। समय के साथ जो बदलता है है वह बेहतर होता है। जिस तरह मनुष्य का जीवन शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, समय के साथ हर अवस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, उसकी जानकारी जो है परिपक्व होने लगती है और उस अनुभव को समाज में बांटने लगता है। आज के युवा वर्ग के पास समय नहीं है किसी का बात सुनने के लिए, क्योंकि उनका सबसे अच्छा साथी जो है मोबाइल है, और मोबाइल को वे खोल लेते हैं तो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, वह मोबाइल में घुसे रहते हैं। मैं ऐसे युवा साथियों से बोलूंगा कि यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ भी कुछ समय दीजिए, उनके जीवन का अनुभव लीजिए, बड़ा ही काम करेगा। आजकल तो जो नेशनल हाईवे है उस पर हम देखे हैं कई बच्चे जो है मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल को हाथ में लेकर यूट्यूब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति बन गई है। जीवन का मूल्य जो है माँ बाप ही समझते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। परिवहन विभाग द्वारा इसके संदर्भ में बड़ा ही कड़ा नियम लागू किया गया है कि बाइक चलाते समय, चार चक्का चलाते समय आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं जिसकी भुगतान जो है निर्दोष लोग ही करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मिस्टर सोनू जी बैठे हैं जो प्रत्येक रविवार को बैठते हैं और आपके द्वारा जो संदेश आया है उसे वे पढ़ेंगे और हम पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देंगे।
2: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुँचा हुआ है मदन चौहान जी का इमिलिया से। रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनता हूँ। बिरहा चलते समय बीच में आप लोग रोक देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। छोटा और अच्छा वाला बिरहा सुनाएं और बाकी सभी कार्यक्रम अच्छा है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय चौहान जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम श्रोताओं को एक बार पुनः नमन करूंगा कि आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप लोग अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। जहां लोगों के पास चाय पीने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, कई युवा साथी को देखते हैं कि अपने घर में बाबा से या पिताजी से बात करने का समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है, और उस दौर में भी रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम आपका संदेश मिला में कोई दो चार लाइन लिख कर भेज देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें यह प्रतीत होता है कि आप हमें सुनते हैं, अपने बातों को हमारे साथ साझा करते हैं। आपने कहा कि जब बिरहा शुरू होता है तो बीच में हम लोग रोक देते हैं, तो सच्चाई यह है कि पटना का प्रादेशिक समाचार रात्रि में 7:30 पर है और सुबह में 8:48 पर प्रादेशिक समाचार लाइव देता है, यानी डायरेक्ट बोलता है, और उस समाचार को हम रिकॉर्डेड करके प्रसारित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से रात्रि में 7:30 पर जो बिरहा 7 शुरू होता है उसे हमें रोकना पड़ता है, क्योंकि वह समाचार जब निकल जाएगा तो फिर जो है हमें अगले दिन मिलेगा। इसलिए जो रेडियो रिमझिम के ऑपरेटर हैं सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि ठीक समय पर रात्रि का प्रादेशिक समाचार का हम प्रसारण करें। इसलिए बिरहा को 14 मिनट हमें या 15 मिनट रोकना पड़ता है। वह समाचार जब पूरा हो जाता है तो जहाँ तक हम विराह को रोके हैं फिर उसके आगे का प्रसारण कर देते हैं। हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी है। चूंकि जो ऑनलाइन समाचार होता है वह राष्ट्रीय या प्रादेशिक, वह डायरेक्ट हम उसका प्रसारण करते हैं और हमारे साथ भारत सरकार का नियमावली है, बंदिश है कि उस समाचार को हमें सीधे जिस तरह आ रहा है उसी रूप में हमें प्रसारित करना है। तो इस जगह पर रेडियो रिमझिम परिवार विवश है, लाचार है। हो सकता है आपके पास विरह का थोड़ा सा आनंद का कमी होता हो, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक श्रोता हैं जो रेडियो रिमझिम से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय समाचार, प्रादेशिक समाचार और गोपालगंज का हालचाल सुनने के लिए बेताब रहते हैं। तो उनके भावना का कद्र करते हुए रेडियो रिमझिम नियत समय पर समाचार का प्रसारण करता है। आदरणीय चौहान जी, अन्य कार्यक्रम जो आपको अच्छे लगते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में कुछ नए कार्यक्रमों पर आप चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है रघुवर शाह जी का, नेचुआ जलालपुर से। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनता हूँ। पिछले एक सप्ताह से समय से रेडियो चालू हो रहा है। सुबह का भजन काफी अच्छा है, बाजार भाव भी रविवार को बोला जाए हाल चाल में। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय शाह जी, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम आपके पूरे परिवार को, नेचुआ जलालपुर ग्राम और बाजार वासियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग रेडियो रिमझिम को लगातार और नियमित सुनते हैं। रेडियो रिमझिम भी यही चाहता है कि कम से कम गोपालगंज जिले के सभी निवासी हमें सुने, अपनी प्रतिक्रिया दें और रेडियो रिमझिम को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साक्षर निरक्षर व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन जो उसका विचार होता है, जो उसका अनुभव होता है, वह मेरे समझ से बिजोड़ होता है। हमारे जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति थे कि जमीन का मिट्टी उठाकर बता देते थे कि यह जमीन कैसा है, घर बनाने लायक है, पोखरा खुनवाने लायक है, रास्ता बनाने लायक है। वह जो है इस तरह मिट्टी का अध्ययन करते थे और उनकी शिक्षा जो थी बहुत कम थी। वे न बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े, न कोई ज्योतिषी का विधिवत उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जो मिट्टी को वह उठाते थे और बताते थे वह जो है आज भी अकाट्य सत्य है। हम बचपन अवस्था में अपने बाबूजी के साथ कभी कभार उस पंडित जी के घर जाया करते थे और वह इतनी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें और समाज की बातें मेरे बाबूजी के साथ एक परिचर्चा करते थे। वे हमारे बाबूजी के मित्र थे, लेकिन बचपन अवस्था में उनके संसर्ग में जाने से हमें भी बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मेरे समझ से जो साक्षर व्यक्ति है उसे ज्ञान का भरपूर अनुभव हो जाता है, लेकिन जो निरक्षर है उसके पास अक्षर ज्ञान की कमी रहती है, बाकी वह जीवन का लंबा अनुभव रखता है। इसलिए जो हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें अपने अनुभव के बारे में यही बताऊंगा कि व्यक्ति साक्षर रहे या निरक्षर, यदि वह पिता के उम्र का है तो उसका सम्मान कीजिए, माता के उम्र का है उन्हें भी सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है जो आप दीजिएगा आपके जीवन काल में वही आपको पास लौट कर आएगा। और वही सही और सच्चा व्यक्ति होता है जो जाति धर्म और लिंग के ऊपर उठकर इन सब बातों पर ध्यान देता है। तो वह जो बातें शाह जी आपको हमने बताई वह अपने अनुभव के आधार पर बताया। रेडियो रिमझिम हमेशा बेहतर चीजों का प्रसारण करता है और कोई भी कार्यक्रम प्रसारण करते समय हमेशा एक श्रोता बनकर पहले हम लोग विचार करते हैं कि यदि हमें इस तरह का कार्यक्रम सुनाया जाए तो हमें क्या अनुभूति होगी। ठीक उसी तरह का कार्यक्रम का हम प्रसारण करते हैं। आपने जो भजन के बारे में हमारी प्रशंसा की इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि रेडियो रिमझिम परिवार कभी आपको निराश होने नहीं देगा। और आपने जो रविवार को बताया कि हालचाल में बाजार भाव बताया जाए तो हम अपने टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे। यदि संभव हुआ तो हमें प्रसारण करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपने जो संदेश दिया इसके लिए हम एक बार पुनः आपके पूरे परिवार को नेचुआ जलालपुर गांव के और बाजार के सभी निवासियों को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। सुगंधी पांडे सर नमस्कार, मैं गोपालपुर थाना के अंतर्गत गोपालपुर के रहने वाली हूँ। रेडियो और ऐप दोनों से हम लोग सुनते हैं। आपके यहाँ से ऑफलाइन काफी प्यारे प्यारे गाने बज रहे हैं, ऑनलाइन शो भी चालू किया जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय सुगंधी जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूर दराज क्षेत्र से आपने जो संदेश दिया काफी अच्छा लगा। रेडियो रिमझिम परिवार हमेशा यही चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर गीतों का, कार्यक्रमों का, विज्ञापन का प्रसारण करें और ऐसा प्रसारण करें जो हमारे अति प्रिय श्रोताओं को अच्छा लगे। यदि हम इस काम में सफल हैं तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यदि इस काम में हम असफल हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। रेडियो रिमझिम सुबह 5 बजे से और लगातार रात को 11:10 तक अपना प्रसारण रेडियो पर करता है और ऐप के माध्यम से आप 24 घंटे सुन सकते हैं और आप दोनों सेवाओं का लाभ ले रही हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी हम बेहतर चयन करते हैं और तब हम उसका प्रसारण करते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम कुछ तकनीकी व्यवधान और कुछ कारण से हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका भी प्रसारण हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। और आपने जो सकारात्मक बातें लिखी हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपके परिवार के द्वारा संदेश भेजा गया है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार सिंह जी का। ऊंचका गांव से सर नमस्कार, पिछले 2 सप्ताह से हेलो क्यूज कंटेस्ट का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और मेरे सभी मित्र इस कार्यक्रम को सुनते हैं, इसका रिकॉर्डिंग किया जाए। और मेरा सुझाव है कि रिकॉर्डिंग का समय शाम को रखा जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय अमित कुमार जी, आपके माता पिता को और ऊंचका गांव के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट जो है रेडियो रिमझिम का 18 वर्ष पुराना कार्यक्रम है। जब रेडियो रिमझिमा स्थापित हुआ था उसी समय से यह कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट जो है इतना लोकप्रिय हुआ कि कई निजी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में प्रत्येक शनिवार के दिन इस कार्यक्रम को सुनाया जाता था। और आज जो है कई अध्यापक ऐसे हैं, सरकारी गैर सरकारी, जो अपने विद्यालय में हमेशा कोई ना कोई क्विज कराते रहते हैं। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा ज्ञान कितना तक पहुंचा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी नई बातें जो है जानकारी होती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। इसमें आयु वर्ग का कोई बाधा नहीं है। कई लोग जो है सरकारी गैर सरकारी सेवा में

0: ऐसा चाहता है कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों जो है तेज तर्रार होते हैं। यदि सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सफल होंगे, अगर दिशा थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो पूरा जीवन जो है असहाय की स्थिति हो जाती है। सही और सच्चे मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई है, कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी कोई पुस्तक मिलेगा नहीं मिलेगा, कई परीक्षा में हम भाग लेंगे और सफल हो जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ता है उसे सफलता जरूर मिलता है। यह बातें सत्य है और इतिहास भी इसका गवाह है। लेकिन व्यक्ति जो है समय के साथ अपने लक्ष्य के प्रति विचलित हो जाता है, इसलिए उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है। मान लिया जाए कोई बच्चा सिपाही की तैयारी कर रहा है, एक बार गया, दो बार गया, सफल नहीं हुआ तो तीसरा बार बोला कि अब चलते हैं स्टाफ सिलेक्शन का तैयारी करने, उसमें भी असफल। अब चलते हैं शिक्षक का बीएड कर ले और जो है शिक्षक वाला तैयारी शुरू कर दे, तो बार बार जब ट्रैक आदमी बदलता है तो उसके सफलता में संदेह हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ता है वह सदैव सफल होता है। यदि हमें खेती करना है तो जम के करना है, सब्जी का खेती हो, बागवानी हो, बिना मन का जो है कार्य जो है हमेशा असंतोष पैदा करता है, और खुशी पूर्वक किया गया कार्य जो है व्यक्ति को सफल बनाता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति आरजे है, रेडियो पर बोल रहा है, बगल में मोबाइल रखा है, कभी घर पर बात कर रहा है, फिर कार्यक्रम कर रहा है, धीरे धीरे उसके श्रोताओं की संख्या कम हो जाएगी। आज जो व्यक्ति लगातार श्रोता से जुड़ा हुआ है, आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है, उसका कांटेक्ट जो है रहेगा और वह कार्यक्रम भी सफल होगा। जीवन के हर क्षेत्र में यही बातें जो है लागू होती है। लेकिन जो युवा अवस्था है जहाँ पर शक्ति होता है, जोश होता है, कुछ करने का जुनून होता है, यदि दिशा और लक्ष्य स्पष्ट है तो व्यक्ति जो है सफल हो जाता है। आज जो है कई गांवों में आप देखेंगे कि कई व्यक्ति जो है अधिकारी बन गए, कई व्यक्ति जो है इंजीनियर बन गए, कई लोग जो है डॉक्टर बन गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जब वे लोग अच्छे बन जाते हैं तो धीरे धीरे गांव जो है छूट जाता है। मात्र 10% लोग ही हैं जो उसमें से गांव से जुड़े रहते हैं, बाकी लोग जो है सुख सुविधा मिलते ही गांव की स्थितियों को भूल जाते हैं, यह भी एक विडंबना है। इसलिए हमें अपना लक्ष्य और सोच स्पष्ट रखना चाहिए और जीवन में जहां कहीं भी हम रहे लेकिन अपने जड़ से जुड़े रहे, तभी व्यक्ति तो सफल होता ही है, उसके परिवार के बच्चे को भी लगता है कि वे अपने जड़ से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह आकाश में पतंग उड़ता है और वह जब तक डोर में है तब तक सही है, और जहां वह पतंग कट गया तो कहीं नाला में कहीं कूड़ा में वह गिर जाता है। इसलिए पतंग के तरह, डोर के तरह व्यक्ति को अपने जड़ से जुड़ा होना चाहिए, और जो व्यक्ति जड़ से जुड़ा रहता है उसका वर्तमान तो अच्छा ही होता है, आने वाले बच्चे जो है भविष्य में वह भी सफल होते हैं क्योंकि वह अपने जड़ से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है मौलादीन अंसारी चाणी दुर्ग। मैं एक निजी विद्यालय में शिक्षक का कार्य करता था, अभी मैं दुबई में रहता हूँ। यहाँ ऐप के माध्यम से रेडियो रिमझिम को सुनता हूँ। आपका संदेश मिला कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है। मैं विदेश से आने के बाद आपसे मिलना चाहूँगा, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय मौलादीन जी,

0: आपके पूरे परिवार को, दुबई में जो भी आपके साथी हैं, उन सभी को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आप एक निजी विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद दुबई में गए हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। विद्यालय निजी हो या सरकारी, जब व्यक्ति शिक्षक का चोला पहन लेता है तो अपने आप ही वह शिष्ट आचरण में आ जाता है, और बच्चों को शिष्टाचार सिखाने से पहले व्यक्ति खुद शिष्ट बनकर उनके सामने एक मिसाल पेश करता है। हो सकता है आर्थिक कमी से आप दुबई गए होंगे, लेकिन जब तक आप शिक्षक थे, एक बेहतर शिक्षक के रूप में कार्य किए होंगे और दुबई में भी आप लोगों को जागरूक कर रहे होंगे। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अंधेरे से रोशनी के तरफ ले जाती है, व्यक्ति के दिमाग के बॉल को जला देती है, व्यक्ति गलत और सही का निर्णय करने लगता है, और व्यक्ति जो है स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। और आप दुबई में रहते हुए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, प्यार करते हैं, यह जानकर हमें भी अच्छा लगा। आप जैसे सैकड़ों हमारे श्रोता हैं जो संदेश तो नहीं भेज पाते हैं, कभी कभार भेजते हैं, लेकिन वह हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, और हम भी चाहते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, रेडियो रिमझिम को सुनते रहें और अपनी मन की बातें हमको बताते रहें। हमारे पास आवाज है और आपके पास विचार है, और जब दोनों का तालमेल होता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से ही प्रवासी भारतीयों के विषय में हमेशा चिंतित रहा है, उनके बेहतरी के लिए कामना करता है और उम्मीद करता है कि वे सदैव आर्थिक रूप से मजबूत रहें। और आपने एक अलग से प्रस्ताव रखा कि हमसे मिलना चाहते हैं, तो रेडियो रिमझिम का मोबाइल नंबर रेडियो रिमझिम के नाम से फेसबुक है, वहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी आप मिलना चाहें उस नंबर पर फोन करें, एक बार बात करें और फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि हम एक सेवक हैं और श्रोताओं के प्रति सदैव आदर और सम्मान रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यदि हमारे श्रोता हमसे मिलना चाहें तो निसंकोच होकर मिलें, अपने बातों को कहें, हमें भी काफ़ी खुशी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है आमठा लाइन बाजार से। देवेश मौर्या जी का, रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं ऑनलाइन शो में हमेशा जुड़ता था, बाकी रिकॉर्डेड कार्यक्रम बहुत अच्छा है। संस्कार और सभ्यता की बातें हमें काफ़ी अच्छी लगती है, इसके लिए हम रेडियो रिमझिम परिवार को धन्यवाद देते हैं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो आगे कई संदेश है मेरे पास, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
0: आदरणीय मौर्या जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जो प्रश्न रखा वह उचित है और सही है। रेडियो रिमझिम हमेशा से चाहता है कि हम अपना ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम रेगुलर रखें। कभी कभी हमें भी तकनीकी परेशानी, मानव बल की परेशानी हो जाती है, जिसके वजह से हम जो है कई कार्यक्रम से विचलित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि सफल होने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, और जो प्रयास करता है वही सफल होता है। आपने संस्कार और सभ्यता की बातें की, तो सफल व्यक्ति मेरे समझ से वही है जो संस्कार के साथ अपने कार्यों को करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लोग कहते हैं है, इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर है। कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। आपके भीतर अनंत शक्ति है। जब इंसान गंदे और मैले कपड़ों में पहनने में शर्माती है, तो गंदे और मैले विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जिंदगी एक ऐसी पहेली है कि इसे अच्छाई के साथ आप देखेंगे तो जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा करेंगे, और यदि आप बुराई के साथ देखेंगे तो हमेशा आपसे गलती हो जाएगी। आजकल मोबाइल है, आप उसमें जो चीज देखना चाहें वही चीज आपको दिखाते रहेगा, और जब अच्छा देखना चाहें तो आपको अच्छा भी दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी तरह यह जीवन है। जीवन में अपना लक्ष्य, अपनी बातें स्पष्ट रखनी चाहिए और व्यक्ति को भटकावे में नहीं आनी चाहिए। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरह से धन कमा रहा है, किस तरह से कोठा बना रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, आप कितने समर्थवान हैं, उसी के अनुसार अपना कदम बढ़ाएं। मेरे समझ से कि हमें जानने वाला हमसे बेहतर कोई नहीं है, और नकल करने वाले व्यक्ति के पास अकल होनी चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए दो तीन मंत्र है। जिस काम के प्रति आपको लगाव हो उस काम को बेहतर ढंग से करें। पटीदारी में सरकारी नौकरी हो गया, उसके लिए आप जो है अपने माथा को दीवार पर नहीं पटके। आप यदि लगता है कि हम भी सफल हो सकते हैं तब प्रयास कीजिए, क्योंकि यह जीवन जो है एक निश्चित समय के लिए है, और उसी निश्चित समय में हमें सभी कामों को करना है और फिर प्रस्थान कर जाना है। ज्यादा सोचिएगा, आजकल कई तरह की बीमारी आ गई है, शुगर हो जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, कई तरह की व्याधियां शरीर के अंदर समा जाती है। तो अपने सामर्थ्य और समय को देखते हुए जो व्यक्ति निर्णय लेता है वह व्यक्ति सफल होता है। हम अपने लंबे जीवन काल में इस बात को महसूस किए हैं, इस बात को ओबलाइज किए हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपना निर्णय लेना चाहिए। यदि हमारे पटीदारी में कोई यूपीएससी निकाल लिया और उसको देखकर हम भी तैयारी शुरू किए, तो एक लंबा समय, परिश्रम और धन की जरूरत पड़ती है, और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं यह हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, और वही व्यक्ति सफल होता है जो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए लंबे लक्ष्य तक पहुंचता है। लंबे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबी छलांग जरूरी नहीं है, छोटा सा कदम जो है प्रतिदिन परिवर्तन का संकेत देता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों से बात करते करते समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन रेडियो रिमझिम आपके प्रति हमेशा समर्पण भाव से अपने कार्यों को करता है। अपने पूरे जिले की सूचना प्रतिदिन रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे देता है, और प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। यह आप लोगों के तरफ से सकारात्मक सहयोग है कि रेडियो रिमझिम बेहतर करने का प्रयास करता है, और जो हमें सुन रहे हैं उनके जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन आए। वे जो जिस परिवार से हैं, जहां से भी हैं, जीवन में बेहतर करें, यही कामना हम लोग करते हैं। और रेडियो रिमझिम आपको कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक करने का प्रयास करता है। जो भी सूचनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमें प्राप्त होता है उसका हम त्वरित गति से प्रसारण करते हैं, यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। तो चलते चलते इस भीषण गर्मी में अपने को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बुजुर्ग और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और अपने अगल बगल किसी न किसी पात्र में थोड़ा सा जल रखें ताकि जीव जंतु पशु पक्षी भी उस जल को ग्रहण कर सके। यह मानव धर्म है। इसी के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
13: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
14: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
13: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
14: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
13: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
14: जहां हर निवाला कहे वाह।
15: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
16: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
15: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
17: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
15: संपर्क 99 393 65 9 30।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Thank you.

0: रिपोर्ट स्कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: ठक ठक
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
17: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
17: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
20: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
20: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
17: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। भीषण गर्मी को लेकर सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो गया है फुल, जिला प्रशासन ने की आम जनता से अपील। करंट लगने से एक व्यक्ति की हो गई मौत, लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सभी थानों पर गुंडा परेड तथा चौकीदारी परेड का हुआ आयोजन। एक एम्बुलेंस चालक संदिग्ध स्थिति में हो गया है लापता, परिजन बताए जा रहे हैं परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। लगातार बढ़ रही गर्मी को लेकर जहां लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, तो वहीं लोगों में बीमारी का असर भी दिख रहा है। गर्मी के वजह से बहुत सारे बच्चे और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके वजह से गोपालगंज के सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड लगभग फुल हो चुका है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में तेजी से बढ़ रही संख्या, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को लेकर डॉक्टर भी परेशान है। लोग बीमार पड़कर सीधे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ दिनों में लू, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत लगातार लोगों में मिल रही है और ऐसे मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है। अधिकतर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज लंबे समय तक धूप में रहने या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के कारण शरीर में पानी और नमक की कमी तेजी से हो रही है, जिसके वजह से कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं आ रही है। अस्पताल में अब अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी लगातार मरीजों की निगरानी में जुटे हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन के पदाधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। छोटे बच्चों के विद्यालय को भी बंद किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुबह और शाम को अपने आवश्यक कार्यों को करें। 10 बजे के बाद और 4 बजे के पहले ज्यादातर, बहुत अति आवश्यक ना हो तो अपने घरों में सुरक्षित रूप से रहें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, बल्कि पानी के साथ नमक और नींबू पानी चीनी मिक्स करके दिन में लगातार पीते रहें, बच्चों को भी पिलाएं, और धूप से बचने की सलाह स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लोग भी दे रहे हैं। इधर नगर थाना की पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लंगड़ा मोड़ मानिकपुर के पास चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री करते समय छापेमारी कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंची तो 2 मोटरसाइकिल पे सवार आधा दर्जन लोग भागने का प्रयास करने लगे। इसमें 2 व्यक्तियों को पुलिस ने बल के प्रयोग से पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान में एक आरोपी मनीष कुमार पिता बबलू तिवारी, जो पार नवादा थाना जिला गोपालगंज का रहने वाला है। यह आरोपी थावे के पिठौरी गांव का निवासी है, परंतु वर्तमान में पार नवादा गोपालगंज में रहता है। दूसरा आरोपी धनेश प्रसाद, यह हजियापुर के करण प्रसाद का पुत्र है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है इन आरोपियों ने मोटरसाइकिल से संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिस पर पुलिस ने दोनों को चोरी की मोटरसाइकिल होने के मामले में गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की खरीद बिक्री करने की बात आरोपियों ने स्वीकार की है और 2 चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है, और इस मामले में अब पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल कर रही है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के बरवा सेमरिया गांव में हाई टेंशन 11,000 वोल्ट तार के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय धर्मदेव सिंह बताए जा रहे हैं। इसके बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बैसिया बाजार के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रशासन ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि बरवा सेमरिया निवासी पारस कुशवाहा के पुत्र रामदेव सिंह बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहे थे, तभी वह हाई टेंशन तार के नीचे से गुजर रहे थे, इसी बीच तार के चपेट में आ गए, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल स्थिति को प्रशासन ने नियंत्रित किया है और मृतक के परिजनों को विधि सम्मत सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थानों पर आज चौकीदारी परेड और गुंडा परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क एवं सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए, तो वहीं स्थानीय सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने, पुलिस एवं आम जन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, असामाजिक तत्वों के गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों पर विशेष नजर बनाए रखने के लिए और उनकी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का भी नियमित संकलन करने के आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही शराब तस्करी एवं अवैध शराब निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने तथा क्षेत्र में आसूचना संकलन को और अधिक मजबूत करने और विधि व्यवस्था के प्रभावी संधारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रहे। इधर सभी थानों पर गुंडा परेड में भी जेल से निकले हुए कुख्यात अपराधियों को थाने पर नोटिस देकर बुलाया गया था। लाल नोटिस देकर प्रत्येक सप्ताह ऐसे अपराधियों को पुलिस थाने पर बुलाकर उन्हें कड़ी चेतावनी दे रही है कि अगर ऐसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग अगर भविष्य में कोई भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। सभी आरोपियों को गुंडा परेड में बुलाकर पुलिस उन्हें कड़ी चेतावनी दे रही है और प्रत्येक सप्ताह ऐसे लोगों को गुंडा परेड में बुलाया जा रहा है।
इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस चालक संदिग्ध स्थिति में लापता हो गया है। इसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के दहीभत्ता गांव निवासी रेहाना खातून ने कुचायकोट थाने में आवेदन देकर अपने पति सोनाफ अली के लापता होने की सूचना दी है।

गर्मी में ग्रामीण घर की छतों पर सोने चले जाते हैं और ऐसे में चोर उनके घरों में घुसकर कीमती सामान की चोरी कर रहे हैं। 11वीं चोरी की घटना के बाद लोग परेशान हैं, पुलिस से लगातार रात्रि गश्ती करने की मांग कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी में हो रही इस चोरी की घटना से आसपास के लोगों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के पकड़ी गांव के पास भी छापेमारी की और यहां भी एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। इसके पास से भी 51 लीटर से अधिक देसी शराब मिली है। पकड़ा गया आरोपी का नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है, जो कुचायकोट के चौचक्का गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके भी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से कुचायकोट प्रखंड के पंचायत भवन परिसर कुचायकोट में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं इत्यादि के विषय पर लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान बाल अनुकूल कानूनी सेवा योजना के बारे में भी बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय और विशेष लोक अदालत समाधान समारोह कार्यक्रम को लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही स्थायी लोक अदालत के गठन पर भी लोगों को जानकारी दी गई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और PLV पंकज कुमार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बच्चों के साथ कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध में रहना है, बच्चों के सुरक्षात्मक तरीके क्या हैं, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यौन उत्पीड़न और विद्यालयों में गरीब, अक्षम एवं कमजोर बच्चों को मिलने वाली सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गई। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर न्यायालय से निर्गत इश्तेहारों का विधिवत तामीला किया। इस दौरान कई अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने पहुंचकर फरार आरोपियों के घर इश्तेहार का तामीला किया, जिसमें आरोपी अंकित कुमार, जो थाना बैकुंठपुर के सबली का निवासी है, इसके विरुद्ध भी इश्तेहार का तामीला किया गया। तो वहीं आरोपी जग्गू राय, अनिल राय तथा बहारन के घरों पर भी इश्तेहार का तामीला किया गया। ये लोग बैकुंठपुर के मुंजा जगदीशपुर गांव के निवासी हैं और अलग अलग मामलों में फरार चल रहे हैं। इधर कटिया थाना की पुलिस ने 33 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है। ऐसे में पुलिस ने सिद्धवनिया बाजार के आगे गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल सवार से 33 लीटर देशी शराब बरामद किया और इसमें आरोपी नंद किशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो थाना चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उस्मानपुर गाँव का निवासी बताया रहा है। उचका गांव थाना की पुलिस ने शराब कांड के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर पहले से मामला दर्ज था और पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी शंभू पासी के घर छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। यह माझा के शेख टोली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा माझा पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे अप्राथमिकी अभियुक्त नितेश कुमार सहनी को गिरफ्तार किया है। यह माझा थाना क्षेत्र के मधुसरिया गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया हरदो गांव में मठिया दयाराम मोहल्ले में लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों में काफी आक्रोश है। लोग यहां कह रहे हैं कि सड़क की समस्या के वजह से यहां के लोगों को भारी परेशानी हो रही है और लोग स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से मठिया हरदो गाँव में खराब सड़क को निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीषण गर्मी को लेकर सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो गया है फुल। जिला प्रशासन ने की आम जनता से अपील। करंट लगने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सभी थानों पर गुंडा परेड तथा चौकीदारी परेड का हुआ आयोजन। एक एम्बुलेंस चालक संदिग्ध स्थिति में हो गया है लापता। परिजन बताए जा रहे हैं परेशान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज एक बार फिर से मैं लौट आई हूँ अपनी सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ और उनके पीछे छुपी हुई कहानियों के साथ। आज की मेरी प्लेलिस्ट उन गानों के नाम हैं जो आज भी 50 साल के बाद भी उतने ही खूबसूरत हैं, उतने ही जवां हैं और हमें जुबानी याद हैं। उस एरा के नाम है आज का ये शो, जब फिल्में रंगों की मोहताज नहीं थी। उस एरा का थ्रिल और एक्साइटमेंट आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ द ब्लैक एंड व्हाइट एरा की, जब दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर जी, शमी कपूर जी, मधुबाला, साधना, मीना कुमारी जी जैसे सितारों ने अपना जादू बिखेरा था बड़े पर्दे पर। जब ओपी नैयर, मदन मोहन, एसटी बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान दी। ये वो वक्त था जब गाने वन गो में रिकॉर्ड किए जाते थे, और हम जब भी गोल्डन एरा के गानों की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई गाना दिमाग में अगर आता है तो वो है लता दीदी की आवाज़ में गाना लग जा गले। वैसे क्या आप जानते हैं, ये गाना फिल्म के डायरेक्टर ने पहली बार सुनकर रिजेक्ट कर दिया था। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी ने काफ़ी कन्विंस किया और उसके बाद इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, और ये गाना इतना पॉपुलर है कि 50 साल के बाद भी आज के सिंगर्स इस गाने के कवर बना रहे हैं और काफ़ी हिट भी हो रहे हैं। One of my favorites from today's playlist, लग जा गले, लता जी की आवाज में।

श्री 420 फिल्म से था ये गाना, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। और आज ब्लैक एंड वाइट इरा के, गोल्डन इरा के कुछ गाने आप तक लेकर के आई हूँ मैं। वैसे उस जमाने में ज्यादातर गाने रोमांटिक और मेलोडियस हुआ करते थे, और सही मायने में उस समय अगर कोई एक सिंगर थी जो कि छाई हुई थी, जो इंडस्ट्री में रूल कर रही थी, तो वो थी लता मंगेशकर जी। वैसे जब लता जी मुंबई आई थी तो उन्होंने अपने संगीत की जो ट्रेनिंग है वो उनके गुरु विनायक जी के अंडर शुरू की थी, लेकिन 1948 में विनायक जी नहीं रहे, जिसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने उन्हें मेंटोर किया एज अ सिंगर। उस समय उन्होंने लता जी की मुलाकात करवाई थी प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी जी से, जो कि 1948 की फिल्म शहीद बना रहे थे। लेकिन तब शशाधर साहब ने लता जी की आवाज़ को बहुत पतली कह करके रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से हैदर जी बहुत खफा हो गए थे कि उन्होंने इस आवाज़ को परखा और तराशा और किसी को ये आवाज़ पसंद नहीं आई, तो उनके ईगो पे बहुत ठेस पहुंची थी। उन्होंने कह दिया था, लता मंगेशकर जी से कहा था कि एक समय आएगा जब यही सारे डायरेक्टर्स म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तुम्हारे कदमों में गिरे हुए मिलेंगे तुम्हें, और तुमसे भीख मांग के कहेंगे कि मेरी मूवी में गाना गा दो। और लो, ये बात सच भी हुई। वो हैदर जी ही थे जिन्होंने लता जी को अपना पहला ब्रेक दिया था विद द सॉन्ग दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं गाना छोड़ा। मूवी थी मजबूर, जो कि 1948 में आई थी, और इनका बिग ब्रेक बन गया था ये अपने करियर में। लता जी ने खुद भी ये डिक्लेयर किया था कि अगर उनके कोई गॉड फादर हैं या थे तो वो गुलाम हैदर जी ही थे। वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने उनमें भरोसा दिखाया। तो चलिए सुनते हैं लता जी का ही अगला गाना, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। अजीब दास्तां।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
7: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
7: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
7: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569655।
8: प्रसाद क्लिनिक।
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, और आज ब्लैक एंड व्हाइट इरा के, गोल्डन इरा के कुछ गाने आप तक लेकर के आई हूँ मैं।

0: ना क्या कहेगा।
1: किशोर दा और आशा जी की आवाज में ये गाना सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर पेइंग गेस्ट फिल्म से। वैसे ये गाने मुझे बहुत पसंद है, और अगर गोल्डन एरा की मेलोडी क्वीन लता दीदी की बात करें तो वो गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन तो थी ही, लेकिन अगर एक और एक ऐसी आवाज थी जो उस समय छाई हुई थी तो वो थी मोहम्मद रफी साहब की। क्या आप जानते हैं, रफी साहब को घर पर फीको बुलाया जाता था, और उनका म्यूजिक वर्ल्ड में और सिंगिंग में इंटरेस्ट तब आया जब वो किसी और को इमिटेट करते हुए पकड़े गए थे। एक्चुअली उनके गली में एक फकीर था जो कि बार बार आता था और कुछ तो बोल करके कुछ लोग या कुछ दोहे बोलता रहता था, और वो सुन सुन करके मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आदत हो गई थी उसकी कॉपी करने की, और वो कॉपी करते थे तो खुद उनका इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में, और लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया कि ये तो बच्चा गा सकता है, और तब जा करके उन्होंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। वैसे रफ़ी साहब बॉक्सिंग के भी बहुत शौकीन थे, और बॉक्सिंग किंग उस समय के मोहम्मद अली वो शिकागो गए थे टूर के लिए, तो रफ़ी साहब ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की अपने परिवार वालों से, साथ ही टूर के ऑर्गेनाइजर्स से, कि वो उन्हें भी शिकागो लेकर के जाएं और मोहम्मद अली जी से मिलवाएं। वैसे तो मोहम्मद अली किसी से मिला नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया से एक इतना बड़ा कलाकार आया है शिकागो उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने खुद समय निकाला और मोहम्मद रफ़ी जी से मिले थे। और एक ज़माने में रफ़ी जी ने कहा था कि द ओनली सेलिब्रिटी जो वो मानते हैं कि एक सेलिब्रिटी है तो वो सिर्फ मोहम्मद अली हैं। चलिए, खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, ये बहुत ही बड़ी बात है। सुनते हैं रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में गाना नया दौर से उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वीकेंड क्लासिक।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे?
2: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। गोल्डन एरा की काफी ऐसी फिल्म्स थी जिन्हें आज भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है, जिनमें से गुरुदत्त साहब की प्यासा और कागज के फूल, राज कपूर साहब की आवाज और श्री 420, महबूब खान साहब की मदर इंडिया और के आसिफ जी की मुगले आजम रही हैं। ग्रेटेस्ट फिल्म्स के ग्लोबल लिस्ट में रेगुलर फीचर होने के बाद भी ईच वन ऑफ दीज क्लासिक्स इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड सिनेमा इन द सब कॉन्टिनेंट फॉर डेकेड्स टू फॉलो। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस जमाने में फिल्म को या तो कमर्शियल सक्सेस मिलती थी या क्रिटिकली लोगों को फिल्म अच्छी लगती थी। एक ऐसी फिल्म बना पाना जो कि लोगों को भी अच्छी लगे और पैसे भी खूब कमाए, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर जाकर मुगले आजम और प्यासा जैसी फिल्में आईं जो कि कमर्शियली भी हिट हुई और पैसे भी इन्होंने खूब कमाए। और उस दौरान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हिंदी फिल्म अगर कोई थी तो वो थी महबूब खान साहब की मदर इंडिया। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म ने। पर फिलहाल सुनते हैं गाना हम उस फिल्म से जिसमें नरगिस और मधुबाला जी को माला सिन्हा और वहीदा रहमान जी ने रिप्लेस किया था। मैं बात कर रही हूँ फिल्म प्यासा की। इस फिल्म में पहले नरगिस और मधुबाला जी लीड रोल निभाने वाले थे, लेकिन दोनों एक्ट्रेसेस सेम डेट पे अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बड़ा ही चिढ़ गए और उन्होंने फिर दोनों को ही कह दिया कि मत करो ये फिल्म। और गुरुदत्त जी ने खास कहा कि माला जी और वहीदा जी को ये रोल दिया जाए, एंड दैट्स हाउ हमने इन दोनों को देखा इस फिल्म में। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का गाना हम आपकी आंखों में, रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाज में।

आज हम बात कर रहे हैं उस जमाने के बारे में जब लोगों का थिएटर्स तक जाना और फिल्में देखना अच्छा नहीं माना जाता था। मैं बात कर

0: कलाकार थे जिनकी फिल्में बाकी लैंग्वेजेस में भी डब की जाने लगी। इंडियन लैंग्वेजेस ही नहीं, यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी इनकी फिल्मों को डब किया जाने लगा और काफी फैन फॉलोइंग थी इनकी। साथ ही राजेश खन्ना जी वो पहले ऐसे एक्टर बने जिनकी फिल्में जो थी वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में भी रिलीज हुई और लोग थिएटर्स तक गए जाकर के एक इंडियन एक्टर की फिल्म देखने के लिए, क्योंकि राजेश खन्ना जी का तो स्टार्डम ही कुछ ऐसा था। तो उस जमाने के बेहतरीन सितारों के नाम आज का ये शो था और राजेश खन्ना जी की बात हो रही है तो उन्हीं का अगला गाना आपको सुनाते हैं। राजेश खन्ना जी और आरडी बर्मन जी की साथ में पहली फिल्म थी लता जी की आवाज में, ये गाना है आजा पिया तो है प्यार दू, बहारों के सपने फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: आजा पिया तो है प्यार दू, गोरी भैया वार तू, इसलिए तू इतना उदास, सुखे सुखे हूँ

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over east Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
5: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स।
2: बोलो कौन था

0: दोबारा नहाने गई थी?
1: हाँ बिल्कुल गई थी।
0: कल तेरे साड़ी पे जूस गिरा था और तुम दोबारा नहाने गई थी। कोई खिड़की से किचन में झांक रहा था, बोलो कौन था?
1: अरे

0: बोलो कौन था?
1: पता नहीं।
0: कौन था?
1: नहीं पता।
0: तेरा भाई था?
1: नहीं।
0: तेरा दोस्त था?
1: नहीं।
0: तेरा यार था?
1: नहीं।
0: तेरा प्यार था?
1: नो।
0: तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा प्यार, बोलो कौन था?
1: पागल हो क्या?
0: बोलो कौन था?

0: बोलो कौन था?
1: अरे मेरे बाप।
0: तेरा कजन था?
1: ना।
0: तेरा सजन था?
1: नो नो।
0: तेरा ददन था?
1: ये कौन है?
0: कि तेरा मदन था?
1: ये कौन है?
0: तेरा कजन, तेरा सजन, तेरा मदन, तेरा ददन, बोलो कौन था?
2: गर्दन उठाड़ो।
0: बोल कौन था?
1: चुप! मैं भी चिल्लाऊं क्या यार? प्यार पे भरोसा करो, कब से

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: अवन तनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं
0: अवन, डीजे बजाता बस तारे आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस दो मिनट रुक जाना।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हेलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से भगवान के बोले तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से जान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: यही है कि गेहूँ के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूँ का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे वो सारी बदरिया,
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमे कॉल के जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
4: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Bhage bhage firte hain.
5: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत है आपका रेडियो रिमझिम नंबर 4 FM में।
6: सोनी मैम प्रणाम।
7: जी प्रणाम,
6: क्या हाल रहा?
7: बिल्कुल बढ़िया, रहो बताए कैसा बानी?
6: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है ये?
7: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इशू हुई।
6: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
7: ना, रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद और ये चालू बता रहे तो इसका मतलब नेटवर्क इशू होगा।
6: तो ये बारिश हो रही है क्या अभी भी?
7: काफी भयानक वाला।
6: अच्छा, सुनाई कैसा बात?
7: सब बढ़िया, धनेश मिश्रा बात करते हैं।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, आइकॉनिक आज भोजपुरी में बात करेंगे बात।
7: चलिए बढ़िया बात,
6: लौड़ो भोजपुरी कमेंट करनी बड़ा बढ़िया लगे।
7: अच्छा,
6: अभी हमने तो मजबूरी बना कि हिंदी आदमी बोले ला तो भोजपुरी। अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
7: कोनो भाषा नहीं है भोजपुरी नहीं
6: है, लेकिन मजबूरी बा कि आदमी हिंदी आदत पड़ गई, भोजपुरी बतिया पड़ रहा हिंदी में आ जाने को।
7: हाँ, सामने वाला जब हिंदी बोली तब बोले के पड़ जाला। आज ड्यूटी में बानी की रूम पे?
6: ना, आज ड्यूटी में बनी है, हमने सब सोमवार का छुट्टी रहा।
7: अच्छा, आज कौन गाना सुने को बता दी?
6: आज काजल सहनी का सुना दी।
7: अच्छा, काजल सहनी के
6: और ये दाज गहरा मिलल बा प्यार के।
7: अच्छा,
6: ये आज सुना दी।
7: और सुनवाई के भी बात?
6: हाँ, वही रवि भैया भाभी लिखना सुनने वाले सारे को। रवि फोन किया था कि नहीं?
7: ना, अभी तो रवि फोन ना के लिए रही है।
6: गाँव में भेज ना?
7: अच्छा, तो ये बात तो ना पता, बाकी गाँव आवे के बाद अभी बात ना भेज।
6: चलिए, फिर ढेर बात हो गई।
7: जी जी, चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार सोनी जी।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
5: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
6: भैया
5: तो क्या हो रहा था अभी?
6: अभी तो घर पर आए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
5: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
5: शादी वाला और सुनवाना भी है?
6: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
5: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
6: जी। नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: जी कुमारी गोपालगंज से।
0: जी कैसे हैं खुशी जी?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
0: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
1: बोल सका है।
0: कौन सा गाना?
1: भोजपुरी गाना बोल सका है
0: जी। बिल्कुल बोल सकता है भोजपुरी गाना।
1: लाए तो माई हमारे लगी हो।
0: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
1: हाँ यही।
0: अच्छा, और सुनाना भी है?
1: हाँ, सिरजी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडी रही सुने सभी को।
0: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना आपकी?
1: हाँ कर दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हाँ संग जी, हमारा संग एक्शन होता का
4: जी? जी का होता थे बताए।
5: फोन उठा के कट गया है, नेटवर्क
4: ना जी सबके संग होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसाता थे।
5: हम जाने के हमारे संग होता है कभी, वो भरी
4: ना ना, आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश होता।
5: हम नहीं कहता अभी नीचे हो
4: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला रहता महीने, जैसे अंदर पैर रखने फिर बारिश शुरू हो गए। राकेश भारती बात करता नहीं
5: ना? हाँ जी, हाँ जी
4: जी। तो सब बताए जी,
5: सब बढ़िया बा। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, आंधी पानी होई तरी।
4: ओ दिन तेज भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
5: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने अपना लोग के लागल रहे, उधिया गए
4: सब लेके चल गए।
5: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा, तब तक पतल उतल में उधिया
4: बोला की ना खाए दे आज
5: ना खाए के मिले।
4: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए?
5: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहा है, एक फीट तक पानी लग रहा है, तो मैं आदमी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
4: ना खा पाई है। सही बात बा।
5: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम सोल है ओकरा में पानी देखते देखते जो रहे ओकरा में पानी भर गए,
4: वह बात बटे खाना भी बर्बाद हो गए।
5: हाँ।
4: जी तो बता दी गाना कौन सुने के बा?
5: अच्छा सुने के चाहत रहे हैं पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
4: जी, और सुनवाए के भी बा?
5: हाँ सुनवाए के पूरा रेडियो काल फैमिली बार हुआ बानी हम बानी। अरे घर तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न, छटक गई बड़न जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
4: अच्छा अच्छा क्या वहाँ के श्रीमती जी ने की आवेदन का?
5: श्रीमती जी कहते थे कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो तो हमारा संगे कहो रहो
4: ना, तो 24 घंटा में 23 घंटा ना तो रखी।
5: हाँ तो अब बड़न जी बार बार हमारे कहे चले जाए बोलन,
4: तब तक लड़ाई होके के बाद बटे।
5: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है, बुधे के दिन समझा खेद बने की तू हमारा संग भाई मत रहा।
4: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात
5: बता। हां कति बनी के हमरा संग रहबो, हम अपन जा पानी चाह ठीक बनी, हमरा से जब जरूरत पड़े तब हमरा से मिल लीह।
4: जब काम पड़ी तब मिल लीह ठीक बा।
5: हां काम पड़ी तब मिल लीह,
4: चली बढ़िया।
5: काम पड़ी तब मन के बिना मतलब के हमरा संग रहले भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल
5: हां हमको मेरा भी कहना नहीं है बा।
4: चली ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
6: काहे आखिर काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे, आज आंसू पोछतनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैडम, नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
4: जी कैसे हैं मन्नान जी?
5: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
4: जी जी बिल्कुल हो गया है।
5: हो गया कि हो रहा?
4: नहीं नहीं हो गया है
5: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
4: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
5: तो गाना सुना दीजिए मैडम।
4: जी
5: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार। हाँ तो गाना हमको वही सुनना था
4: और सुनवाना भी है।
5: और सुनवाना है क्या है? वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोगों को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है ना, आलिया नाम है ना, इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग वो लोग सुनेंगे।
4: तो प्ले करे गाना?
5: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, हम जरा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे
0: आएगा। और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है,
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक, ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: नाम मनोज कुमार
1: जी,
0: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
1: कैसे हैं?
0: ठीक है।
1: तो क्या हो रहा था?
0: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
0: देखिए, हमारे गाँव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर झील, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
1: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
0: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम।
1: चलिए,
0: गाना हमको सुना दीजिए आज
1: जी,
0: दोस्ती का। गुड़िया कब तक रूठी रहोगी?
1: और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिम के सारे श्रोतागण को। ठीक है प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: थैंक यू
6: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
7: जी रियाज अंसारी सिवान।
6: जी जी, क्या हाल चाल है?
7: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
6: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
7: हाँ, मैं बन गया।
6: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
7: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
6: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
7: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार करेंगे, वो मार करेंगे।
6: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
7: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम खोल के था आपको, सेकेंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
6: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
7: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का समय आना, टेंट सब उड़ जाए।
6: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
7: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गांव की। वहाँ
6: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
7: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना
6: जी। और डेडिकेट भी करिएगा।
7: हाँ करेंगे, आकाश सैनुल्ला मुस्कान और शहजादी।
6: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
7: और एक बात मैम, कुछ बोल सकते हैं शायरी वगैरह? क्योंकि
6: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
7: नहीं, नहीं, नहीं,
6: नहीं, नहीं, नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
7: वो सबसे दूर रहते हैं हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे सैड सॉन्ग के साथ में ए भी बज जाए। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि हम याद रहते हैं हमेशा मुस्कुराने।
6: जी जी,
7: बस इतना ही, थैंक यू।
6: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल।
7: थैंक यू मैम,
6: वेलकम।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: दोस्तों क्या कहूँ अपने जिंदगी के बारे में, वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: एह उमर के उमंग में, सन्हिया के रंग में, अतु दूसरा के संग में जाता था। अतने अफसोस रही कि तू हमार ना भइल।
2: चुप रह, हमके माफ कर दो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: नीचे में
1: नहीं नहीं आप गुरु
2: एक श्री जी की चुनरी लाओ जितने लोग महाराज जी के संग सबको श्री जी की प्रसादी माला ये हमारी लाडली जी की चुनरी है महाराज जी
3: प्रसादी चुनरी
2: प्रसादी चुनरी एक महाराज जी को पहले

जितने भी भगवत पार्षद, भगवत स्वरूप संत महात्मा जन हैं, इन सबके आश्रय से हमें एक महान वस्तु प्राप्त होती है जो किसी साधना से प्राप्त नहीं होती है। जो हमारा मन और पांच ज्ञानेन्द्रिया, जिन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते प्रकृति स्थान कर सती, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। सबसे बड़ा योग इसी विषय का महापुरुषों की कृपा से प्राप्त

0: होता है कि हम अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों को जो मन सहित शब्द स्पर्श रूप रस गंध में विचरण कर रहा है उनको परमात्म तत्व में स्थित कर सकें। एक नियत समय तक के लिए ये शरीर है, जब तक ये स्वस्थ है तभी तक स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थित अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। चित्त वृत्ति को, एक एक वृत्ति को गुरुजन महापुरुषों की आज्ञा में समर्पित करके और प्रभु के चिंतन में डूब जाओ। सबसे बड़ा योगी जिसने अपने अस्तित्व को समझ लिया या मिटा दिया, दो बात, समझ लिया तो एक ही है तत्त्वम अशि, और मिटा दिया प्रभु के सिवा अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया। भक्ति और ज्ञान, ज्ञान तत्त्वम अशि, तत् जिसे कह के संबोधन किया गया वो त्वम अशि, ये गुरुजनों की कृपा, या फिर प्रभु के रूप में, नाम में, लीला में इतने तन्मय हुआ कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी ही शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल, एकमात्र आराध्य देव की शुद्धि में आना एक में ही पड़ेगा, चाहे ज्ञान से आओ चाहे भक्ति से आओ। अनेकता में विविध प्रकार के दोष गुण यही छाए हुए हैं, जो सृष्टि का स्वरूप दिखाई दे रहा है एक ही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वो एक ही बहुत रूपों, अब बहुत रूपों से हटना होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। सबसे बड़े योग का स्वरूप भगवान हमारी बुद्धि में आकर विराजमान हो गए। बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, लगाने की चेष्टा कर सकते हैं, पर भगवान जब हमारी बुद्धि में प्रकाशित हुए तो अब बुद्धि बुद्धि नहीं रह गई, अब श्री कृष्णमय हो गए। मन मन नहीं रह गया, श्री कृष्ण, अब कुछ और नहीं रह गया, सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेवासरम। ये आखिरी फल है महापुरुषों के सानिध्य का। तो आप लोगों के बड़े भाग्य हैं कि आप ऐसे गुरुजन, ऐसे महापुरुषों का संग कर रहे हैं। शरीर स्वस्थ कीजिए और मन को भी बीमारी रहित कीजिए। मन की बीमारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, षड विकार जित अनघ अकामा, कोई कामना नहीं, कोई विकार नहीं, तो अपने आप अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। ये जो देहाभिमान लेकर हम विषयों में विचरण करते हैं, मान सम्मान आदि की चेष्टाओं में सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये अज्ञान के कारण है। गुरु कृपा दृष्टि से जिस समय ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, जो है उसी का बोध हो जाता है, जो हमारा स्वरूप है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ये जो अभाव उत्पन्न हुआ है, कमी उत्पन्न हुई है, कामना प्रकट हुई है, ये स्वरूप का विस्मरण के कारण हुई है। और यदि गुरुजनों की कृपा से स्वरूप का स्मरण हो जाए तो वहां अभाव नहीं है, न सोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा। सदैव एक ही लक्ष्य रखिए, वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा भक्त है जो अपनी गुरु जी की आज्ञा में प्राण समर्पित कर दे। विचार करने की जरूरत नहीं होती गुरु आज्ञा पर, जिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अपने आप मुक्त हो जाता है, अपने आप समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाक्य पर जो स्थित हो गया मोक्ष स्वयं जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? क्योंकि वो मुक्त है ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। हम जानबूझकर फंस गए हैं देहाभिमान के कारण, गुरु कृपा इस देहाभिमान का छेदन करता है। अभी तक हमें कोई ऐसी साधना नहीं दिखाई दी जिसमें देहाभिमान को सपोर्ट न मिले। 10 साल से मौन हूं, देहाभिमान पुष्ट हो रहा है। 20 साल से फलार हूं, वो पुष्ट हो रहा है। गुरु कृपा ही एक ऐसा है जो देहाभिमान का नाश करके शुद्ध बोध करा देता है। तो साधन कुछ भी कितना भी करे कहीं ना कहीं उसको पुष्टता मिलती रहती है, और जब गुरु कृपा से ज्ञान होता है, इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। जिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया है प्रभु के सिवा वो और कुछ नहीं, साक्षात प्रभु ही हमारा कल्याण करने के लिए इन रूप में, क्योंकि हम इसी रूप से भाषा समझ सकते हैं, हम इसी रूप से उनका दुलार प्यार पा सकते हैं, इसी रूप से हम शासन पा सकते हैं, डांट सकते हैं वो, तो हमारे भगवान हमारे ब्रह्म हमारी आत्मा ही मूर्तिमान होकर हमें अपने ऐसे पकड़ करके अनुभूति करा रहा है, पकड़ करके अनुभूति, जैसे माँ ने सुख के हेतु खेलने से हटा करके परम सुख में लगा दी थी, हम लोगों ने सुख का हेतु विषय संसार समझा, गुरुजनों ने घसीट करके प्रभु की तरफ लगाया। आज्ञा में रहिएगा, इनकी आज्ञा में ही परम पद छुपा हुआ है, विचार की आवश्यकता नहीं है, विचार करना है अपने अंतःकरण की बात पर कि गुरु आज्ञा से विमुख है या सन्मुख है। अगर गुरु के विरुद्ध है तो कितनी भी धर्मयुक्त बात हो हमें नहीं माननी, गुरुदेव के वचन ही हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि हम न वेद जानते हैं न शास्त्र जानते हैं। माँ की तरह गुरुदेव से प्यार करे, हम वेद शास्त्रों का निर्णय क्या है हम क्या समझ पाए, हमारे गुरुदेव के मुख से जो निकला वो हमारे लिए परम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, वो परम ब्रह्म शब्द है, उन्हें स्वीकार कर ले। बहुत अच्छा लगा महाराज जी एक स्वयं कृपा करके दर्शन दे आप लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई संत का प्राणपन से अनुगमन करता है, क्योंकि इस कलिकाल में ऐसी कुछ रीतियां चल गई हैं कि मनमानी चलना तब तक तो गुरुजी, मन के अनुकूल तो गुरुजी, और मन को जहां मारने की बात आई फिर स्पष्ट दिखाई देता है, मन के अनुकूल चले तो गुरुजी, और मन के अनुकूल नहीं हुए तो बोले देख रहे ना वो खास बात नहीं है जो हम सोच के लगे थे, तुम्हारी सोच क्या थी, प्राकृतिक अहंकार का पोषण मनोनुकूलता ये गुरु की बात नहीं होती, गुरु तो मन भंजन करता है, मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई संत का हो चाहे राम, तो आप सरिस चाहे सब की ना, संतों का स्वभाव होता अपना जैसा बनाना, बड़े भाग्य है, बस महाराज श्री के अनुकूल चलिएगा, उनकी आज्ञा पे रहिएगा, उसी आज्ञा में परब्रह्म का रस छुपा हुआ है, और जिसने गुरु आज्ञा उल्लंघन कर दी चाहे जितनी साधना कर ले, गुरु आज्ञा तज करे जे बान यह अधर्म यह सभान कान न रसकन मेरा है। मानते हैं लोक में यश हो सकता है प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन ये टिकेगी क्या कितने दिन का, जब शरीर ही नहीं टिकेगा तो इसका महत्व क्या, गुरु कृपा टिकेगी, जहां भी जाओगे गुरु कृपा कवच तुम्हें परमानंद की अनुभूति कराएगा, ऐसा
1: ये मेरे साथ आए थे
0: जी
1: इलाके में
0: जी जी
1: सैकड़ों एकड़ जमीन में
0: जी
1: हजारों हजार वृक्ष लगाए
0: जी जी
1: 500-600 मयूर
0: हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर
1: सारे खरगोश और ये सब
0: हाँ
1: सैकड़ों गायें हैं बहुत ही सुंदर है
0: हाँ नहीं इन्हीं का तो अभाव हो रहा है आज लताओं का हमारे पशु पक्षियों का अभाव सा हो रहा है गौ सेवा का भी क्योंकि पहले किसान जैसे बैलों से हल जोतते थे ना तो बहुत प्रयोग अब क्या है ट्रैक्टर का समय आ गया तो बैल की आवश्यकता नहीं दूध अधिक चाहिए तो भैंस बांधनी है क्योंकि देसी गाय तो 2-3 लीटर शुद्ध दूध के लिए जो हमारी देसी गाय है बहुत से बहुत 5 लीटर इससे आगे नहीं अब जहाँ प्रलोभन धन का है बहुतायत आधुनिकता का है वहाँ हमारी गौ सेवा धर्म स्वरूप बैल सेवा पशु पक्षियों की सेवा यहाँ सैकड़ों मोर विचरते थे बंदर और कुत्तों ने अभाव लताओं का हो गया कहाँ बैठे नीचे मिले तो उन्होंने मार दिए ये तो बहुत कृपा है खूब लताओं की सेवा करो
1: विशेष गाय सेवा को दोनों मयूरों की सेवा को बहुत
0: हाँ बहुत बहुत
1: इनके हाँ। बड़े सिद्ध संत थे गुरु जी
0: जी
1: हाँ उस इलाके में
0: जी जी नहीं तो किसी की भी मति गति जो भी सुधरी है तो गुरुजनों की कृपा से सुधरी संतों की कभी किसी का कुछ भी प्रकाश हुआ है तो संतों की कृपा से हुआ है हाँ मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेदना। हाँ, किसी भगवत प्रेमी महात्मा की, किसी आत्मबोध महात्मा की कृपा हुई तभी उसमें मति गति बदलती है, नहीं तो शरीर पोषण इंद्रियों का पोषण इतने प्रधान जीवन रह जाता है। जैसे पिता अपने बच्चों पे दुलार करता है, साफ दुलार करके कृपा करके दर्शन दे ले आए। कहीं कहीं जब इस क्षेत्र में आइएगा तो जरूर पधारिएगा, दर्शन दीजिएगा।
1: एक महाराज जी, जैसे किसी के पास कोई सामर्थ्य हो, जैसे किसी के पास बल का सामर्थ्य होता है, किसी के पास धन का सामर्थ्य होता है, किसी के पास विद्या का सामर्थ्य होता है
0: जी,
1: किसी के पास मतलब वो विधान के तहत उसको मिल जाता है
0: जी।
1: माता पिता गुरुजन समाज किसी न किसी प्रकार से उसके पास पहुंच गया
0: जी,
1: बहुत बड़ा सामर्थ्य हो
0: जी,
1: और उसको ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक कोई अध्यापक है
0: जी,
1: और उसके पास बहुत सामर्थ्य है, वो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को
0: जी,
1: और उसके मन में आया कि बस इसको छोड़ करके ना चुप हो जा
0: जी।
1: तो ऐसे क्या उस सामर्थ्य का वो उपयोग नहीं हो पाएगा
0: जी,
1: तो उससे उसको दोष, आपके विचार में
0: जी
1: उसको दोष लगेगा या ऐसी कोई बात नहीं है?
2: पर जी, हम ये कह रहे कि जैसे किसी के पास विद्या का अध्ययन है, उसने किया,
1: मान लो मेरे पास शास्त्र है
0: हाँ,
1: और मैं शास्त्र की सेवा ना करके बस मौन हो जाऊं,
0: तो भी आपका काम करेगा जो शास्त्र का बल है ना, वो का वाणी मौन होने पर भी काम करेगा, क्योंकि आपके देखने से, आपके बैठने से, आपके चलने से जो आपने शास्त्र में अनुभव किया है वो बिना बोले आ जाएगा सब में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक गुफा में बंद कर लीजिए आप अपने को, तो आपके परमाणु पूरे हमारे भारत को, पूरे हमारे विश्व को पुष्ट करेंगे। ये अध्यात्म सत्य वस्तु है, ये छुपाने से छुपती नहीं है। आप संकल्प कर लीजिए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं बोलूंगा, फिर भी ये संकल्प करोड़ों अरबों का कल्याण कर देगा। इसमें अपराध या दोष की तो बात ही नहीं है, पर यदि वो कृपा करके बोल दे तो जो अमोघ वस्तु प्राप्त हुई है वो पिपासुओं की पिपासा शांत करेगी, पर अगर वो नहीं बोलते हैं तो भी परम कल्याण हो जाएगा। जो इन ऐसे महापुरुषों के चरणों का केवल आश्रय ले ले तो ये वाणी से मौन है, हृदय से नहीं। हृदय माता की तरह, अनंत माताओं की तरह दुलार होता है संतों के हृदय में, वो बस दृष्टि से हो जाएगा, दृष्टि से हो जाएगा, वो करुणा भरी दृष्टि से एक बार देख लिए तो अज्ञान का नाश हो जाएगा। जो शास्त्रों का फल है अज्ञान की निवृत्ति, वो संत दर्शन मात्र से हो जाएगा, उनके हृदय की जो भावना है वो मंगल कर देगी।
1: हमारे एक भगत जी भी हैं, कथा भी करते हैं
0: जी,
1: नित्य भक्तों के साथ यहाँ आए हैं
0: जी जी।
1: आप भी कुछ सर?
3: महाराज जी, जैसे दो प्रकार से हम समाधि में जा सकते हैं
0: जी,
3: एक अपने को भूल के नेति के भाव से
0: जी,
3: एक सब में परमात्मा के भाव को स्वीकार
0: जी,
3: क्या ये बात ठीक?
0: आप किस भाव में चल रहे हैं?
3: सब रूप में परमात्मा का ही सब रूप दिखाई।
0: संतों का आखिरी निर्णय यही होता है, संतों का आखिरी स्थिति की, जीवन की स्थिति अनुभूत करने के बाद वो सम होते हुए भी, वो स्थिति प्रज्ञ होते हुए भी व्यवहार में विचरण करते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका व्यवहार व्यवहार नहीं है, वो जगत मंगल स्वरूप है। उनका खाना पीना, हंसना खेलना, बैठना, उपदेश करना, मौन हो जाना या शासन दिखाना, ये सब परम मंगल के लिए है। तो आखिरी में कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष अपने को गुरुजनों की कृपा से देखने को मिले, बहुत गंगा किनारे से एक बहुत संपन्न महापुरुष, सबको आना पड़ा है, सबने कृपा करके अपनी जो आखिरी लीला है, हाँ जो एकांतिक सेवन तो है ही, पर उस सब ने व्यवहार स्वरूप विश्व रूप भगवान का परम मंगल किया है। ये हमने देखा विश्व रूप, हाँ तरी है गंगा के किनारे, दिगंबर रहते थे तो जब माताएं बहने आती थी तो ऐसे वस्त्र डाल लेते थे। जब हम लोग गए पूरी मंडली के साथ थे तो खूब अच्छे अच्छे पदार्थ भोग पवाए, फिर शाम के एकांत में उनको खोजा तो एक कुशासन बिछा था, उसके ऊपर एक कपड़ा भी नहीं, और दिगंबर, और हाथ में दो रोटी थोड़ा भरता लिए। उनका स्वामी जी, हम लोगों को आपने पुआ खीर और क्या क्या पवाए, आप ऐसे? गुरु जी, हम तो सेवक हैं, सेवक के लिए तो इतना ही, स्वयं में तितिक्षा, ब्रह्मानुभूति से तृप्त और व्यवहार ऐसा सबके लिए, ये तो हमने सिद्ध पुरुषों में देखा है। और सही पूछो तो इस सबसे श्रेष्ठ समाधि यही है कि सबके बीच में रहते हुए अपनी स्थिति में रहना और सबको स्थिति की तरफ झकाना। बड़े बड़े महापुरुषों में, उड़िया बाबा आदि बड़े बड़े महापुरुषों में आप रह भी नहीं सकते, आपको ऐसी प्रेरणा होगी आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, पक्का पक्का। जीवन में निश्चय

मैं अपने स्वरूप में रहता है, हर समय स्थिति में रहता है। कुछ घंटों की समाधि के बाद जो बाहर दशा आती है वो उसमें नहीं होती, वो बाहर चलते फिरते उठते बैठते हर समय अपनी स्थिति में रहता है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बाजार में बैठा हुआ भी समाधिस्थ है, बहिर्मुख पुरुषों के बीच में भी बैठा हुआ समाधिस्थ है, वार्ता करता हुआ भी मौन है, देखता हुआ भी बिल्कुल नहीं देख रहा है, खाता पीता हुआ भी बिल्कुल खा पी नहीं रहा है। समझ रहे ला जी? बड़ी कृपा आप सबकी, बड़ी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद जी जी धन्यवाद धन्यवाद।